ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार की 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और

0: स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दुनागिरी अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती वंदन वा।

संस्कृत का एक श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकते, जो निर्धन हैं उनके मित्र नहीं होते, और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये था चिंतन, अब भक्ति संगीत।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा लिखा जोखा आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान आज भाग 225। संगीत सरिता कार्यक्रम में चल रही है श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। आज तीसरी कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर।

8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। सुबह 8:30 पर चित्रलोक, और शाम 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा जो केंद्रित होगा निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी, कहानी निवेदिता श्रीवास्तव की, संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 बजे चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो कार्यक्रम में विश्व योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से बातचीत योग के विषय पर। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे मनचाहे गीत कार्यक्रम होगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप नाटक सुनेंगे मृत्युहीन प्राण। मृत्युहीन प्राण नाटक का पहला भाग आज सुनवाया जाएगा, मूल बांग्ला नाटक आलोक भट्टाचार्य का, हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठौलिया, प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार। कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस से बातचीत का तीसरा भाग सुनवाया जाएगा बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में शाम 4 बजे। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार तीसरा भाग। जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम शाम 7 बजे। 7:45 पर जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में कहानी स्वामिनी का तीसरा भाग। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचन ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक, 8:45 पर समाचार, 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। तो ये था लिखा चुका आज दिन भर के मुख्य कार्यक्रमों का, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए रामचरितमानस गान, आज भाग 225।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हों, तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया।

उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में है प्रेम और शोक

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का पुनश्च स्वागत है और स्वागत है

0: जाने माने संगीतज्ञ वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी का। पंडित जी, वायोलिन का विहंगम संसार ये शीर्षक भी आप ही का दिया हुआ है
1: जी।
0: वायोलिन की व्यापकता की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि फिल्म संगीत में कितना अधिक इसका इस्तेमाल हुआ है।
1: बिल्कुल जयंत जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और इस बाजे की व्यापकता को आप देखिए कि पाश्चात्य संगीत में गज के बाजों में इसकी प्रमुखता सिद्ध हुई
0: जी।
1: और बड़े बड़े कंपोजर्स ने इस पे काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ। और उनको देख के हिंदुस्तान में भी ये बाजा जब आया
0: जी,
1: तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे क्लासिकल और वेस्टर्न भी, जुबिन मेहता का मैं नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस बाजे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपनी सिम्फनी में। और फिल्म म्यूजिक की बात करें आप तो फिल्मों में तो इसका लाजवाब इस्तेमाल हुआ है। एक जमाना था 50-50 वायलिन इस्तेमाल होते थे फिल्म स्टूडियोज में, और उस जमाने में इतने अच्छे अच्छे इस पे पीसेस बने, इतना अच्छा अच्छा काम हुआ कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। श्रोताओं को आप एक पीस जरूर सुनाएं, लेकिन फिल्म का, जो कि हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया हुआ है
0: जी, आशा जी की आवाज में वो गाना।
1: एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से झूठे नैना बोले सांची बतिया।
0: जी जी, ये वो गीत है। और इस गीत में जो ग्रुप वायलिन बजा है
1: जी,
0: आप उस झलक की बात,
1: उसकी बात कर रहे हो।
0: तो उस गीत की ये झलक जहाँ खास तौर से ग्रुप वायलिन बजाया गया है, पहले अपने श्रोताओं को सुनाते हैं फिर उस पर बात करें।
1: एग्जैक्ट।

0: क्या बात है, मजा आ गया पंडित जी। लग रहा था कि बस इसे सुनते ही चले जाएं, मगर इसकी विशेषता के बारे में आप बताइए।
1: इस गाने में, इस गीत में जिस तरह से हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वायलिन का इस्तेमाल किया
0: जी,
1: मेरे ख्याल से 25-30 वायलिन जरूर होंगे, क्योंकि मैं तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ तब उपस्थित नहीं था, तो उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितना सारे वायलिन उसमें बजे हैं और किस दक्षता के साथ वो ऑर्केस्ट्राइजेशन हुआ है।
0: जी हाँ जी,
1: फिल्म में अच्छे अच्छे काम हुए हैं इस बाजे के साथ। और ये वहां से अगर शुरू करें आप, रोशन साहब के जमाने से, मदन मोहन जी के जमाने से, या नौशाद साहब के जमाने से, तो एक से एक गीतों में इस वाद्य की उपस्थिति आपको प्रभावित करेगी। और बहुत अच्छे अच्छे पीसेज हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बनाए हैं
0: जी
1: इस वाद्य को लेकर। एक गीत मुझे याद आता है, वैसे तो कई सारे गीत हैं जिनका जिक्र करना संभव नहीं यहाँ पे, लेकिन नौशाद साहब का एक गीत आप बजा सकते हैं जिसमें बहुत संजीदा किस्म के पीस वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं
0: जी।
1: कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई,
0: वाह,
1: लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी,
0: आइए सुनते हैं।

0: पंडित जी, ये तो हुई ग्रुप वायलिन की बात
1: जी।
0: जब समूह में वायलिन बजता है, सोलो वायलिन का भी बड़े खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल हुआ है फिल्म संगीत में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए, सोलो वायलिन को लेके भी इसमें अच्छे अच्छे पीसेस लगाए हैं लोगों ने, और प्यारे लाल जी, लक्ष्मीकांत जी
0: जी,
1: जो पुराने संगीत निर्देशकों में रहे, प्यारे लाल जी का तो स्कूल ही था, फिल्म म्यूजिक सिखाते थे वो, मतलब फिल्म वाले लोग सब उनके शागिर्द थे वायलिन को लेके। और प्यारे लाल जी के पिताजी, शायद उनका नाम राम प्रसाद जी था, वो बहुत प्रचलित थे पूरे बंबई में गुरु के रूप में सिखाने में। और प्यारे लाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे, तो उनके हिसाब से कुछ उनमें उन्होंने कुछ पीसेस दिए हैं, जैसे एक शायद मुझे याद आ रहा, शोर फिल्म, अगर आपको याद आ रहा हो।
0: हाँ हाँ, मनोज कुमार निर्देशित।
1: जी जी जी।
0: और इसमें जो गीत है, एक प्यार का नगमा है।
1: एग्जैक्टली।
0: इसमें बहुत ही सुंदर वायलिन का पीस बजाया है प्यारे लाल साहब ने।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए।
1: बिल्कुल, श्रोताओं को सुनवाइए।

0: किशोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पंडित जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का उल्लेख हो रहा है आने वाली अगली कड़ी में। प्यारेलाल साहब ने जहां जहां अपना वायलिन वादन जिन गीतों में इस्तेमाल किया है उसका हम विस्तार से जिक्र करेंगे, उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज की ये कड़ी यहीं समाप्त हो रही है। श्रोताओं, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: बिल्कुल, नमस्कार।
2: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनेंगे भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लता मंगेशकर के एक बेमिसाल गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं। जिद्दी फिल्म का ये गाना, एक बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म जिसके जरिए कई कलाकारों की शुरुआती यात्रा थी, और प्रेम धवन के बोल थे खेमचंद प्रकाश की तर्ज इस गाने में। साल 1948 ये फिल्म बनाई थी शाहिद लतीफ ने।

चंदा रे जा रे जा रे, ये गीत आपने सुना। देवानंद और कामिनी कौशल जिद्दी फिल्म के सितारे थे और खेमचंद प्रकाश का संगीत था। इस फिल्म के बारे में ये जो कहा कि ये फिल्म कई सितारों के करियर की शुरुआती फिल्म थी। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये किशोर कुमार का गाना था जो उनका शुरुआती प्लेबैक था। अब इत्तेफाक की बात ये है कि अगला गाना है मुकेश का और वो उनका शुरुआती प्लेबैक है।

0: डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ ये गीत था अनिल विश्वास की तर्ज थी 1945 की फिल्म मुकेश की आवाज। जैसे कि मैंने कहा कि ये पार्श्वगायक मुकेश का पहला प्लेबैक था। दरअसल मुकेश का जो पहला गाना है वो ये नहीं है, फिल्म निर्दोष में 1941 में उन्होंने गाना गाया था, दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या, लेकिन ये प्लेबैक नहीं था क्योंकि ये गाना उन पर ही फिल्माया गया था। इस फिल्म के हीरो भी वही थे। दरअसल मुकेश और तलत महमूद ऐसे दो प्लेबैक सिंगर रहे हैं जिन्हें एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक रहा है और उन्होंने कुछ फिल्में भी की। यहां किशोर कुमार का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो तो बाकायदा एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट क्या नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए साल 1950 पर, चितलकर और साथी, गीत पी एल संतोषी का, संगीत सी रामचंद्र का।
1: hey, मैं हूँ एक खलासी, मैं हूँ एक खलासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी।

0: 1950 में आई फिल्म सरगम का ये गाना था। चितलकर और साथियों की आवाजें थी। पीएल संतोषी के बोल थे। पीएल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी आज के जमाने के जाने माने लेखक निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता, और संगीत खुद सी रामचंद्र का था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
0: कौन लाया? कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: 21 जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है। मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से आप भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुन रही हैं और 1950 में आई एक फिल्म का गाना हमने ब्रेक के पहले आपको सुनवाया था। अभी हम 1950 में ही रहेंगे। फिल्म बाबुल का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। एस यू सनी की यह फिल्म नौशाद के संगीत के लिए जानी जाती है। शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में ये गाना शकील बदायूनी के बोल। दिलीप कुमार और नरगिस थे इस फिल्म में।

मूल्य बिस्तरी गीत कार्यक्रम का अगला गाना सुरैया की आवाज में है, पंडित नरेंद्र शर्मा के बोल, एस डी बर्मन की तर्ज और फिल्म का नाम अफसर।

देवानंद और सुरैया ने एक साथ कई फिल्में की, उनमें से एक थी ये यादगार फिल्म। और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, संगीत सी रामचंद्र का है, फिल्म का नाम समाधि। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, और ये गाना अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध गाने पर बना था, चीको चीको ओ पोर्टो रिको।

सावन फिल्म के एक गाने का ये उदास संस्करण है जो बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देता। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत हंस राज बहल का था और ये था आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
2: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
1: काफी होता है। मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में हम हैं राही प्यार के।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

संगीतकार रवि के स्वरबद्ध के दो गीत आपने सुने। ये डोली फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में था। इससे पहले आदमी और इंसान फिल्म का गाना था, वो आशा भोसले की आवाज में था। हमें राही पैर के कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

21 जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग

0: बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है,
1: काफी होता है।
0: मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से हम है रही प्यार के।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हम है राही प्यार के। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्र

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जहरा और हो जहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह क्रय और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में

0: अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
2: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

किशोर कुमार के गाए खुशबू फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार।

हंसते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए, हर ओर सुंदर मुस्कान का प्रभास करिए। खुशियों से खिल उठती है जिंदगी हमेशा, इसलिए सदा खुश रहने का प्रयास करिए।

0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: तो सुमीता जी की इन्हीं खूबसूरत सी बातों के साथ अब मिलवाते हैं आपको नमस्कार की टीम से, परिचय करवा देते हैं आपको। HPT ट्रांसमीटर पर है विक्रम सिंह भाटी और

0: कैलाश चंद्र सोलंकी।
1: और एफएम ट्रांसमीटर पर है सीएल सोनी।
0: कंट्रोल रूम से साथ मिल रहा है पारसपुरी गोस्वामी का।
1: कंसोल पर प्राइमरी चैनल पर हमारे साथ हैं कल्याण विश्नोई।
0: वहीं एफएम का कंसोल संभाल रही है उद्घोषिका हिना खान।
1: नमस्कार, कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ की।
0: और नमस्कार की पूरी टीम के साथ मैं हूं कार्यक्रम की होस्ट चंद्रकला सुथार।
1: और मैं हूं मीता मुल्तानी।
0: दोस्तों, टीम परिचय के बाद आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मित्रों, जीवन में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जीवन एक संघर्ष है, चलता ही रहेगा। कभी अपने जीने का अंदाज न खोना।
1: जी हाँ मीता, जिंदगी के बारे में अक्सर हम बातें करते रहते हैं कि जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। आखिर जिंदगी को जीने का सलीका क्या है? अक्सर हम ये सवाल खुद से पूछते हैं। भागदौड़, तनाव और भविष्य की चिंता में हम आज को जीना भूल जाते हैं। हाल ही में मुझे मीता एक लेखक का अनुभव पढ़ने को मिला जो अपनी उम्र को महज एक आंकड़ा मानते हैं। वे कहते हैं, जो लोग पूछते हैं कि इस उम्र में अकेले यात्रा क्यों कर रहे हैं, तो मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूँ, मैं अभी जवान हूँ। और उनकी सादगी भरी दिनचर्या ही उनकी ऊर्जा का राज है मीता। और घर का बना सादा भोजन, भूख से थोड़ा कम खाना और निरंतर पढ़ने लिखने का शौक, पर उससे भी बड़ी सीख मीता जी उन्होंने अपनी पारिवारिक जीवन में दी है।
0: अच्छा,
1: वे कहते हैं कि आज मैं परिवार में सलाह नहीं देता, बल्कि जो निर्णय बच्चे लेते हैं उन्हें अपना मान लेता हूँ। इसी वजह से मुझे परिवार में सम्मान मिलता है, वही मेरे जीने की ताकत भी है। 85 की उम्र में भी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति का बरकरार रहना अनुशासन का ही नतीजा है मीता। और जिंदगी को भरपूर जीने का मतलब भी तो यही है कि सुकून से खाना, खुश होकर चलना और अपनों के साथ प्यार से रहना।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: मिता, जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक हम अपनी पुरानी आदतों के साथ कंफर्ट जोन में कैद रहते हैं, तब तक हम अपनी क्षमताओं से अनजान भी होते हैं। अपनी वास्तविक पहचान को जानने का सफर इस दायरे के पार ही तो शुरू होता है, क्योंकि कंफर्ट जोन में हमें कोई चुनौती नहीं मिलती है, कोई डर नहीं सताता है। लेकिन सच तो यही है ना कि इस दायरे के भीतर हम सिर्फ वक्त गुजारते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जब हम इस ठहराव को छोड़कर बाहर कदम रखते हैं, तो वह केवल एक बदलाव नहीं होता, बल्कि खुद की खोज की एक शुरुआत होती है।
1: इसीलिए कहा गया है कि आराम के दायरे से बाहर निकलना वास्तव में खुद से मिलने जैसा है, और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए इस आरामदायक पिंजरे से बाहर निकलना भी जरूरी है। और यह भी सच है कि कठिनाई ही हमारी असली पहचान को बाहर लाती है, और जब शरीर असहज होता है तब हमारा मन जागता है। मन के तो कहने ही क्या, हमारा मन हमेशा नई चीजें, नई काम, नई बातों को ढूंढता रहता है। और कहते भी है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दोस्तों, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और मुस्कुराते रहें।
1: बिल्कुल मीता, और मन के तो कहने ही क्या, हमारा मन हमेशा नई चीजें और नए काम, नई बातों को ढूंढता रहता है। अगर हम मन के कहे अनुसार चलेंगे तो यह हमें भटकाता रहेगा, क्यों? सही बात है ना?
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर इसे अपने नियंत्रण में रखेंगे तो यह हमसे वो करवा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
0: अच्छा।
1: जैसा ठहरा हुआ जो पानी होता है वो साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन सही और सटीक फैसले लेता है। इसलिए कहा गया है कि हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा ठहरना भी जरूरी होता है।

0: मित्रों, मन और दामन हमेशा साफ रखें, क्योंकि मन से मान मिलेगा और दामन से सम्मान।
1: बिल्कुल, अक्सर हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं अमिता, और जब वो पूरी नहीं होती है तो दुख होता है। और मस्त मगन इंसान होता है वो अपनी खुशी की चाबी हमेशा अपने पास रखता है, दूसरों को नहीं देता है।

0: नमस्कार, कार्यक्रम जारी रहेगा समाचारों के बाद। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वे इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों के जरिए 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलओ के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। इस दौरान मतदाता सूची अपडेशन और निर्वाचन जागरूकता में उनकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान ने ऐसा

0: ईआर के दौरान 98% तक शानदार मैपिंग कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए। इस सूची में कई जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इन तबादलों में सभी अधिकारियों को बिना कार्य ग्रहण काल का उपयोग किए तुरंत प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कल आयोजित होने वाली री नीट परीक्षा को देखते हुए 7 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने आकाशवाणी को बताया कि विद्यार्थियों की सुगम आवाजाही के लिए रेवाड़ी बठिंडा, बाड़मेर भगत की कोठी, रेवाड़ी जयपुर जोधपुर सांगानेर और बीकानेर डहर के बालाजी जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में चलेंगी। इसके अलावा भगत की कोठी से जयपुर और मदार से रेवाड़ी के लिए एक तरफा परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी रेलगाड़ियों का विभिन्न छोटे बड़े स्टेशनों पर ठहराव किया जाएगा।
1: 21 तारीख को होने वाली नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए NWR ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्टूडेंट के मूवमेंट और राजस्थान के एग्जामिनेशन सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए उसी डायरेक्शंस में ये ट्रेनें प्लान की गई हैं। इसके अलावा स्टेशन पे अदर तैयारियां भी की गई हैं। स्टेशन पे लोगों को डेपुट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए वो गाइड कर सकें और स्टूडेंट आराम से अपने सेंटर पे पहुंच सकें।
0: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद और उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में हुई राज उन्नति की बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़क जैसी जन सुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आगामी मॉनसून के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को नालों की सफाई, सड़कों के पैचवर्क और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के व्यापारियों को एक बड़े डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए ONDC डिजी दुकान ऐप शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में इस ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नई डिजी ऐप दुकान पहल छोटे दुकानदारों, किराना व्यापारियों और उद्यमियों को डिजिटल वाणिज्य से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारी विभिन्न ब्रांड्स, वितरकों और थोक विक्रेताओं से जुड़कर अपनी खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यम की भूमि रहा है। आज देश दुनिया के हर कोने में राजस्थान के व्यापारी अपनी पहचान बना रहे हैं
2: और इस बात की मुझे खुशी होती है कि देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी राजधानी किसी भी बड़े शहर में जाता हूं, दुनिया के किसी देश में जाता हूं तो वहां मेरे प्रवासी राजस्थान भाइयों को देखता हूं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू वो व्यापारी पूरी देश और दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के मस्तक को गर्व से ऊंचा कर देते हैं जो वहां जाकर के हम सुनते हैं कि शहर में या इस देश में सबसे बड़े व्यापारियों में नाम राजस्थान के 4, 6, 10 होते हैं, ये गर्व से ऊंचा हो जाता है।
0: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। श्री राठौड़ को यह दायित्व वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की

सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया है। नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक वे इस पद का कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयोग में दो नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। इनमें भीलवाड़ा के एमएलवी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संतोष आनंद और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश संगठन मंत्री डॉ दीपक कुमार शर्मा शामिल हैं। इन दोनों नए सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक निर्धारित किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला ब्लॉक और उप ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन की इसी कड़ी में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से जयपुर स्थित जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा। इसमें 18 देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे। संस्थान के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा योगा डे 100 दिवसीय काउंटडाउन के तहत देश भर में 30 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से सेना पुलिस और विभिन्न संस्थानों में योग और तनाव प्रबंधन का प्रचार प्रसार किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ 44 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कैसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। श्रोताओं, हर दिन अपने भीतर इतिहास की अनगिनत कहानियां समेटे होता है। 20 जून भी ऐसा ही एक दिन है जो विश्व और भारत दोनों के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। यह दिन सत्ता परिवर्तन, सामाजिक आंदोलनों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों का प्रतीक रहा है। तो जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास। साल था 1756। कलकत्ता की ब्लैक होल ट्रेजेडी बड़ी ही प्रसिद्ध एक घटना है। 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव के विरोध में कलकत्ता पर हमला कर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। हमले के बाद ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों सहित कुल 146 लोगों को एक छोटे बिना खिड़की वाले बंद कमरे में डाल दिया गया, जिसे बाद में ब्लैक होल कहा गया। अगली सुबह तक इनमें से केवल 23 ही जीवित बचे, बाकी दम घुटने, गर्मी और भीड़ के कारण मारे गए। हालांकि यह घटना ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास में बेहद भावनात्मक और प्रचारित मोड़ बन गई, किंतु इसने कंपनी को सैन्य जवाबी कार्यवाही के लिए प्रेरित किया था।
1: और साथ ही दोस्तों, विलियम चतुर्थ के निधन के बाद मात्र 18 साल की आयु में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन का सिंहासन संभाला था। उनका शासनकाल ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े विस्तार का गवाह बना था।

0: 1877 में 20 जून के दिन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनल को लोगों के लिए खोला गया।
1: बिल्कुल, और मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, जब यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ

0: तो इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों।
1: दोस्तों वर्ष 1789 फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में 20 जून 1789 का दिन बेहद निर्णायक रहा, जब तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि जिन्हें नेशनल असेंबली घोषित किया गया था वर्साय के एक बंद इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। असल में जब उन्हें नियमित बैठक स्थल से बाहर कर दिया गया तब उन्होंने वहीं इकट्ठा होकर यह ऐतिहासिक शपथ ली कि वे फ्रांस में नया संविधान लागू होने तक एकजुट रहेंगे और असेंबली को भंग नहीं करेंगे। इस टेनिस कोर्ट शपथ को किंग लुई 16वीं की राजशाही के विरुद्ध प्रतिरोध और फ्रांस में संवैधानिक लोकतंत्र की शुरुआत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
0: और जर्मनी के V2 रॉकेट का परीक्षण भी किया गया था जो पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष तक पहुंचा था आज के दिन।
1: साल 1966 20 जून के दिन यानी आज ही के दिन ब्रिटेन की मशहूर एविएटर शीला स्कॉट ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी मित्रों, जब उन्होंने अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर पूरा किया। उन्होंने यह सफर 27 अप्रैल 1966 को इंग्लैंड के लंदन से शुरू किया था और लगभग 31,000 मील की दूरी तय करते हुए 189 घंटों में कुल 34 देशों को पार किया। यह साहसिक यात्रा शीला ने पाइपर कोमांचो 2608 विमान में यह पूरी की और 20 जून को वापसी कर इतिहास रच दिया। यह कारनामा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ साथ महिला पायलटों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। विश्वनाथन आनंद ने साल 1998 में आज ही के दिन व्लादिमीर केमनिक को हराकर 5वां फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीता था। और अब सुनते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों आज शनिवार है और शनिवार को सेगमेंट होता है शनिवार की रेसिपी। तो इस सेगमेंट में आज कौन सी रेसिपी है जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, मीता लेकर आई है एक खास रेसिपी। आइए आप और हम मिलकर देखते हैं कौन सी रेसिपी हमारे साथ साझा कर रही है।
4: बिल्कुल चंद्रकला, धूप तो बहुत तेज है पर मौसम तो शरबतों का है ना। तो आज हम श्रोताओं के लिए लाए हैं कोकम मोइतो ड्रिंक। सुना है आपने कभी?
3: नाम तो सुना है।
4: बिल्कुल, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं।
3: बिल्कुल।
4: इसके लिए हमें सामग्री चाहिए।

100 ग्राम कोकम, 400 ग्राम शक्कर, 1 कप पानी, नमक, थोड़ा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, सूखा पुदीना पाउडर, 1 नींबू का रस, 1 नींबू की स्लाइस सजावट के लिए, 4-5 ताज़ा पुदीना पत्ती, आइस क्यूब और सोडा वाटर। अब हम देखते हैं कि ये बनाते कैसे हैं। तो श्रोताओं, पेन और डायरी निकाल लीजिए और नोट करिए। सबसे पहले कोकम को 2 घंटे भिगो दें और ग्राइंडर जार में पीस कर छान लें। फिर पैन में शक्कर, पानी डालकर 1 उबाल आने पर कोकम का पेस्ट डालें और काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, सादा नमक, भुना जीरा पाउडर डालकर 20 मिनट तक इसको उबलने दें। फिर इसमें नींबू का रस डालें और फिर वापस

0: खुश होता हूँ। पेन और डायरी निकाल लीजिए और नोट करिए। सबसे पहले कोकम को 2 घंटे भिगो दें और ग्राइंडर जार में पीस कर छान लें। फिर पैन में शक्कर पानी डालकर एक उबाल आने पर कोकम का पेस्ट डालें और काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, सादा नमक, भुना जीरा पाउडर डालकर 20 मिनट तक इसको उबलने दें। फिर इसमें नींबू का रस डालें और फिर वापस 5 मिनट उबालें। पुदीना पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके ठंडा करें और पूरा ठंडा होने पर साफ बोतल में भर दें। जब भी बनाना हो, सर्विंग ग्लास में नींबू स्लाइस, पुदीना पत्ती डालकर हल्का सा क्रश करें। आइस क्यूब्स और कोकम शरबत डालें, ऊपर से सोडा या स्प्राइट डालकर मिक्स करें और सर्व करें। तो लीजिए, तैयार है कोकम मोइतो ड्रिंक।
1: जी हाँ दोस्तों, और एक बहुत ही यह बेहतरीन और औषधीय फल होता है जो खासकर भारत के पश्चिमी तटीय इलाकों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल खट्टे मीठे शरबत, कड्डी और मसालों के रूप में इसका किया जाता है। और इसके फायदों की बात की जाए तो पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छे से काम करता है और वजन घटाने में भी बहुत मददगार होता है। शरीर को भी ठंडा रखता है और दिल की सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो आप इस शरबत को ज़रूर बनाएं और इसका आनंद लें।

0: बेटियां सुख एक तरफ हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ
1: निसंतान दंपति आ रहे जीवन में खुशियाँ उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर
2: बोल बोल के थक गया
3: क्या हुआ
2: नया किट बैग चाहिए
3: तो पहले कैप्टन से बोलो नहीं सुना तो मैनेजर से
2: करेक्ट
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर
2: चले
3: ले आ गया नया किट बैग
4: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन

0: दोस्तों आइए अब मिलकर सुनते हैं एक भेंट वार्ता, समाज सेवी बंशीलाल भाटी से मीता मुल्तानी की बातचीत, जिसका विषय है मरीजों की निस्वार्थ सेवा। प्रस्तुति और संयोजन राजेश लामरोड़ का।
1: कहते हैं कि जो अपने लिए जीता है वह केवल अपना जीवन जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह अनेक जीवनों को संवार देता है। आज हमारे बीच ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सेवा, संवेदना और समर्पण को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। समाज में बदलाव केवल बड़े संसाधनों से नहीं श्रोताओं बल्कि बड़े इरादों और नेक सोच से आता है। और ऐसे ही हमारे आज के अतिथि हैं जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से यह साबित किया है कि यदि मन में सेवा का भाव हो तो एक व्यक्ति भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। और आज के हमारे मेहमान हैं सुदर्शन सेवा संस्थान के महामंत्री श्री बंशीलाल जी भाटी साहब। तो सबसे पहले आपका आकाशवाणी के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है भाटी।
2: धन्यवाद।
1: भाटी साहब, आपने जो देश के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया है और आपका उद्देश्य भी यही है कि जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए कुछ किया जाए, तो ये समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा जीवन ऐसा समाज के लिए समर्पित हो वैसा नहीं है। एक संस्थान जो सेवा के काम में लगा हुआ है, मेरे जीवन का भी उद्देश्य ऐसा ही सेवामय होने के कारण से मैं उस संस्थान के साथ जुड़ा हूँ। सब मिलकर हमारे जो सामूहिक प्रयास हैं वे सेवा के प्रयास है। मैं उन सारे प्रयासों का श्रेय स्वयं तक सीमित करना उचित नहीं समझूंगा। जिस प्रकार के मेरा जीवन की पृष्ठभूमि रही है, जिन परिवारों से मैं निकल कर आया हूँ, वहाँ अत्यंत अभाव जैसी परिस्थितियां हमारे सामने रही, इसलिए परस्पर सहयोग और सेवा, इसका महत्व हमने बचपन से ही महसूस किया।
1: बिल्कुल, जैसा अभी आपने बताया कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, नागौर से आपके आप मूल निवासी हैं और जोधपुर में आपने लंबे समय से वकालत का पेशा प्रारंभ किया और अपने पेशे के साथ साथ आपने टीचिंग का भी शुरुआत में कार्य किया है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दी है, उसके बाद समाज के साथ आप जो जुड़े हैं, तो ये समाज सेवा लिए आपको किसने प्रेरित किया?
2: ये काम मेरा बचपन से ही चला। मैं विद्यार्थी जीवन से ही, क्योंकि मेरा पारिवारिक, जैसा मैंने बताया, जीवन मेरे पिताजी भी सेवा क्षेत्र में प्रारंभ से ही लगे हुए, उनमें जाना उस समय भी ये उनके जीवन का उद्देश्य रहा। जहाँ छुआछूत का इतना प्रभाव रहा, वहाँ मेरे पिताजी सब बस्तियों में जाकर और लोगों के बीच में, उनके बीच में बिल्कुल परिवार की तरह घुलना मिलना, ये उनका स्वभाव था। अच्छा। तो मुझे ये एक तरह से उत्तराधिकार में मिला हुआ काम है।
1: अच्छा,
2: जो
1: अच्छा।
2: मैं सेवा के क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, तो इनका श्रेय वास्तव में मेरी प्रेरणा स्रोत जो भी है वो मेरे परिवारजन ही है। विशेष रूप से मेरे पिताजी, जिनको नागौर में पहलवान साहब के रूप में जानते थे।
1: अच्छा।
2: वो ही मेरे वास्तविक प्रेरणा स्रोत रहे।
1: बिल्कुल भाटी जी, तो ये जब होता है कि हमें जैसा संस्कारों में बीजारोपण आपके बचपन में

0: मिलता है वैसा ही आगे वृक्ष पल्लवित होता है, और वही चीज आपको बचपन से अपने घर में देखने को मिली अपने पिताजी में, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, और आज आप सुदर्शन सेवा संस्थान के माध्यम से मरीजों की जो एक निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना सर?
1: जब जोधपुर में एम्स की स्थापना हुई और बाहर से परिचित लोग जब जोधपुर में आते हैं चिकित्सा के लिए, तब उनको यहाँ रुकने के लिए उचित इस प्रकार का स्थान, आने जाने के लिए एम्बुलेंस, इस प्रकार की सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती थी। ये हम सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने महसूस किया, तो एक संकल्प जगा कि एम्स के आसपास ही कोई भूमि हमको लेना चाहिए और उस पर ऐसा ठहरने के लिए भवन बनाया जाए।
0: अच्छा।
1: तो प्रारंभ में हमने वो भवन के लिए भूमि यह क्रय की और फिर समाज से ही उस पर संग्रह करके एक भवन जो हमने तैयार किया है, आज लगभग वहां पर 100 लोग एक समय में ठहर सकते हैं, इतनी ठहरने की व्यवस्था, और 11 एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को लाना ले जाना, और उसमें भी 3 जो है अत्याधुनिक और डेवलप्ड जो उसमें सुविधाएं हैं, आईसीयू एम्बुलेंस ये हमारे पास उपलब्ध है, जिनके माध्यम से हम न्यूनतम लागत मूल्य पर उन लोगों को ये सेवाएं देने में सक्षम हो पा रहे हैं।
0: तो ये एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को ठहरने, उनके भोजन, उनके चिकित्सा सहयोग उपलब्ध कराने वाली ही संस्थान है आपकी ये सुदर्शन सेवा संस्थान।
1: जी।
0: तो आपके साथ ये कारवा और भी कई लोगों का होगा, उनके बारे में भी बताइए।
1: लगभग इस समय हमारे संस्थान में 64 हम सदस्य हैं, 64।
0: अच्छा।
1: और अभी रिसेंट हमारी नई कार्यकारिणी भी फिर से चुनी गई है, तो 15 लोगों की हमारी कार्यकारिणी है। उनमें कई लोग हैं जो दिन भर प्रतिदिन 4 से 6 घंटा समय निशुल्क अपना किसी प्रकार का भुगतान नहीं प्राप्त करते हैं, फिर भी वहां पर सेवाएं देते हैं। तो जो वेतनिक कर्मचारियों के अलावा जो ये समर्पण के माध्यम से जो लोग लगते हैं, उनकी सेवाएं ये अतुलनीय है, वो ही हमारे काम का आधार है, और उसी के बल पर हम लोग सफलतापूर्वक पिछले 3 साल से सभी लोगों को प्रभावी रूप से ये सेवाएं देने में सफल हो पा रहे हैं।
0: बहुत बहुत साधुवाद है आपको इन सेवाओं के लिए। भाटी साहब, आप जब ये समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े और आपके सुदर्शन सेवा संस्थान इस क्षेत्र में आगे आया, तो शुरुआत में आपको कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो क्या ऐसी कोई समस्याएं या बाधा आई?
1: बहुत बड़े स्तर पर कोई बाधा आए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सामान्य असुविधाएं ये रहती हैं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमारे पास में इतनी सुदृढ़ कार्यकर्ता टोली रही, इतने सक्षम लोग रहे, और जो सीधा अपना समय नहीं लगा सकते थे उन लोगों ने भी आर्थिक रूप से और संपर्क के रूप में भी अपना संपूर्ण समर्पण इस काम के लिए दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देव दुर्लभ हमारे पास में काम करने वालों की और समर्थकों की जो टोली रही, उसने सारे काम हमारे इतने आसान कर दिए। और ये 3 साल पहले जब हमने भवन में अपना काम प्रारंभ किया, उसके बाद 3 वर्षों में ही हमने वहां पर फिजियोथेरेपी का सेंटर, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी का आउटडोर लगाना, रोगों की जांच की व्यवस्था वहां करना, ये सब काम भी हमने प्रारंभ कर दिए। भोजनालय की व्यवस्था भी न्यूनतम लागत पर बहुत स्वास्थ्यकारी भोजन देना भी हमने हमारा भवन प्रारंभ होने के 15 दिनों के अंदर प्रारंभ कर दिया। तो कुछ तो ऐसा लगता है कि जब हम काम करते हैं सात्विक मन से, तो शायद ईश्वर भी हमारे लिए सहयोगी की भूमिका निभाने लगी।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक व्यक्ति यदि सदमार्ग पर जाता है तो पीछे कारवा बढ़ता चला जाता है और पूरी टीम तैयार हो जाती है, और वही चरितार्थ हो रहा है सुदर्शन सेवा संस्थान के साथ। आपने जो ये संस्थान से जुड़ के अपनी सेवाएं दी है, क्या इसमें कोई ऐसा यादगार अनुभव है जो आप हमारे साथ श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
1: वैसे तो हमारा प्रतिदिन का जो अनुभव है वह बहुत शानदार और उत्साहवर्धक रहता है। मैं महामंत्री के रूप में भी कई बार जो लोग यहाँ ठहर कर जाते हैं, क्योंकि मेरा पूरा समय वहाँ नहीं लगता है, तो जो लोग वहाँ रुक कर जाते हैं मैं उनके संपर्क नंबर लेकर और उनको फोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि यहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा। तो उनसे जो कुछ भी उद्गार हमको मिलते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी तरह से उत्साह का और प्रेरणादायी शक्ति का काम करते हैं। और सबसे बड़ा तो हमारे लिए ये है कि हमारे संस्थान के जो अध्यक्ष हैं रतनलाल जी गुप्ता, वो प्रतिदिन 5 घंटे कम से कम भी संस्थान में आकर बैठते हैं और सारे काम पर उनका इतना नियंत्रण है और उनके सुपरविजन में जो चल रहा है, तो हमारी एक तरह से केंद्रीय शक्ति ये हमारे संस्थान के अध्यक्ष हैं जो पूर्ण समर्पण के साथ प्रारंभ से ही इस काम के साथ लगे हुए हैं। मैं तो एक एक तरह से शोपीस हूँ उनके आगे, तो बाकी मुख्य काम यह उनका रहता है।

0: सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी एक दूसरे को अपना क्रेडिट देते हैं और सभी मिलकर काम करते हैं, और निसंदेह जब टीम का लीडर अच्छा होता है तो टीम बहुत अच्छे से काम करती है और टीम वर्क जहाँ होता है वहाँ सफलता जरूर कदम चूमती है। तो आपके जो यहाँ आने वाले मरीजों को, उनके परिजनों को जो सुविधाएं मिलती है और उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती होगी ना सर, वो संस्थान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती होगी।
1: निश्चित।
0: तो सर यदि कोई और व्यक्ति समाज सेवा शुरू करना चाहे या आपसे जुड़ना चाहे तो उसकी शुरुआत कैसे करे?
1: यदि सात्विक मन से कोई भी जुड़ना चाहता है तो हमसे संपर्क करता है तो हम उनको यथोचित उनकी भूमिका इस संस्थान में भी, और मैं ये भी मानता हूँ कि सेवा के क्षेत्र में आज इतनी संस्थाएं काम कर रही है, उनमें से यदि 20% भी हम माने कि पूर्ण सात्विक भाव से वो लोग काम कर रहे हैं, हम उनके साथ भी संपर्क रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा संस्थान ही सभी को सेवाएं दे देगा ऐसा कभी संभव नहीं है और ये उचित भी नहीं है। चिकित्सा सहायता के लिए अनेक लोग कोई रक्त बैंक के रूप में काम कर रहे हैं, कोई अन्य प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में काम कर रहे हैं, कोई निशुल्क चिकित्सा केंद्र चला रहे हैं, तो ये अद्भुत काम है और ये हमारी जो सनातन संस्कृति है जो दूसरों को सेवा देकर स्वयं को धन्य करने की है, ये भाव लेकर चलने का यहाँ इस देश में भाव है, तो सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है, क्षेत्रों की भी कमी नहीं है, बस अपना मन संकल्पित हो जाए तो वो हमसे भी जुड़ सकता है, नहीं तो अपने अड़ोस पड़ोस में जब देखेगा कोई भी व्यक्ति तुरंत उसको मिल जाएगा कि मुझे सेवा कहाँ करनी है और कैसे करनी है, प्रारंभ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती।
0: अच्छे शब्दों में आपने सभी को ये राह दी है कि कोई पर्टिकुलर कार्य का क्षेत्र नहीं होता है, यदि चाहे इंसान तो अपने पड़ोस से ही शुरुआत तो कर सकता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, तो हम सभी यही चाहेंगे कि सभी प्रसन्न रहें, सभी निरोगी रहें, सभी खुश रहें। सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, जो कई बार उत्सुकता होती है हमारी कि सुदर्शन सेवा संस्थान के बारे में हमने सुना है कि वो प्लास्टिक मुक्त वातावरण के लिए भी कुछ स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाता है, क्या इस तरह की कोई योजना है?
1: हमारे पास में पिछले 7-8 सालों से हमने इसी संकल्प के साथ कि जोधपुर प्लास्टिक मुक्त बने, तो लगभग 15,000 भोजन के पात्र सेट जो हैं, अच्छा। वो हमने जन सहयोग से एकत्र किए हैं,
0: अच्छा।
1: और इस संकल्प के साथ जो व्यक्ति आता है कि मैं अपने यहाँ के जो कार्यक्रम है, हमारा जो भोजन का कार्यक्रम है, उसमें हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहते, उनको हम निःशुल्क वे बर्तन देते हैं, वे आए और अपने बर्तन वहां से रिलीज करवा के ले जाएं, गिनकर, अच्छा। और वापस हमको जमा करा दे, निशुल्क ये पूरी व्यवस्था रहती है, लाना ले जाना उनका रहता है। तो ये इसी प्रयोजन से किया गया कि हम यहाँ से प्लास्टिक को मुक्त करें, एक प्रारंभ हो कहीं ना कहीं से संकल्प कि हम लोग स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ने के लिए, प्लास्टिक मुक्ति का भी काम ये स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि प्लास्टिक है तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी एक स्वास्थ्य का ही मोर्चा है, इसीलिए इसको हमने प्रारंभ किया। साथ ही साथ हमने सुदर्शन सेवा संस्थान का जो भवन है हमारा, हाँ। किशन भैया सेवा सदन, उसके पास एक खाली जमीन पड़ी थी, अच्छा। जो निगम की थी, हमने निगम से प्रयास करके एक MOU किया है, हाँ। कि उसको हम पार्क के रूप में डेवलप करें,
0: अच्छा।
1: हमको उन्होंने जैसे ही ये सुपुर्द किया, हाँ। विकसित करने के लिए, हमने उसको विकास करते हुए आज वहां पर एक शानदार पार्क पिछले 2 सालों में ही हमने उसको विकसित करके खड़ा कर दिया है, जिसमें सब फलदार पेड़ हमने लगाने का प्रयास किया है लोगों के लिए, तो वो कोई भी व्यक्ति आकर देखे तो उस चिकित्सा हब जो बना हुआ है, जहां कितने ही आरोग्य केंद्र चल रहे हैं,
0: हाँ।
1: उनके बीच में वो एक ग्रीनरी का, हरियाली का जो केंद्र है, वो सबके लिए एक स्वास्थ्यकारी वातावरण देने में भी सफल हुआ है, ये भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ।
0: बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके संस्थान की कि मरीजों की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या सुदर्शन सेवा संस्थान की किसी अन्य क्षेत्र में भी कोई सेवा है सर?
1: सेवा के लिए हमने अभी तक अपने आप को इसी क्षेत्र में सीमित किया है, आगामी दिनों में एक योजना यदि सफल होती है तो वो स्वावलंबन को लेकर हम कुछ काम करने के लिए इच्छुक हैं, जहां व्यक्तियों को जो तकनीकी काम में दक्ष होना चाहते हैं या हैं,
0: हाँ।
1: उन लोगों को उनके ग्राहक मिल जाएं और ग्राहकों को वास्तविक जो जानकार व्यक्ति है वे मिल जाए, और कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो हम जो प्रशिक्षण देने वाले संस्थान है उनसे संपर्क करके उनको रोजगार के लिए भी प्रशिक्षण दे सकें, इस दिशा में भी, तो स्वावलंबन से जुड़ा हुआ आर्थिक स्वावलंबन का विषय भी हम सोचते हैं यदि

0: चाहा तो इस दिशा में भी हम कुछ सफलतापूर्वक आगे अपनी भूमिका निभा सकेंगे।
1: बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, क्योंकि स्वावलंबन तो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज की युवा पीढ़ी बेरोजगारी के क्षेत्र में बहुत आगे और बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है, तो स्वावलंबन का अगर कहीं प्रशिक्षण उन्हें मिल जाए, स्वावलंबन आप उन्हें सिखा सकें, तो बहुत अच्छी सेवाएं आप दे पाएंगे समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
0: समाज के लिए मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि उनके लिए संदेश दूं, लेकिन मैं मान के चलता हूं जितना मेरे जीवन का अनुभव है और सार्वजनिक जीवन में सेवा के क्षेत्र में हम लगे हैं, खाली बैठने के लिए कोई कारण नहीं है। बेरोजगार मानकर अपने आप को और किसी प्रतीक्षा में या अवसर की प्रतीक्षा में बैठने का कारण नहीं है। चारों तरफ जैसे ही दृष्टि दौड़ाएंगे हमको लगेगा का काम बहुत है। हम कहीं से भी प्रारंभ करें, 4 साल किसी प्रतीक्षा में नहीं बिताएं, वरन काम प्रारंभ करें, उनमें से आय भी होने लगेगी आपको और आपका जो मन है वो सकारात्मक भाव से भरा रहेगा। तो सेवा के काम से भी आप प्रारंभ करेंगे तो भी आपको समस्या में नहीं पड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम मुझे समर्पित होकर अपना कर्म करते जाओ, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। तो मैं मानता हूं वही सबसे बड़ा संदेश है। कभी मत मानिए कि मेरे पास काम नहीं है, काम है, पहचानिए और लगेंगे तो निश्चित है कि आपको भी सफलता मिलेगी और आपकी कीमत ये समाज भी पहचान करेगा। तो यही मैं सोचता हूं कि संदेश को लेकर चलेंगे तो समाज के लिए भी अच्छा होगा, परिवार और स्वयं के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपनी बात रखी भाटी साहब कि सेवा का दीपक जहां जलता है वहाँ आशा और विश्वास का प्रकाश जरूर फैलता है, और जो दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। तो आपने बहुत अच्छे से अपने संदेश को हमारे श्रोताओं तक पहुँचाया। आप समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहें और इसी तरह पथ प्रदर्शक बनकर दूसरों के जीवन को भी आलोकित करते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप आज हमारे यहाँ पधारे, उसके लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता समाज सेवी बंशीलाल भाटी से मीता मुल्तानी की बातचीत। विषय था मरीजों की निस्वार्थ सेवा। प्रस्तुति एवं संयोजन राजेश लामरोड़ का।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदान

0: कानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

दोस्तों अक्सर हम आज की सुख सुविधाओं में इस कदर खो जाते हैं कि आने वाले कल की सुध ही नहीं रहती। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह कभी करवट लेता ले सकता है। ऐसे में आज हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी बचत कल के किसी बड़े संकट में सबसे बड़ी राहत बनकर सामने आती है। इसलिए कहा गया है कि समझदारी वर्तमान को जीने में तो है ही, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने में भी है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा बचाकर भविष्य के लिए रखना ही तो बचत कहलाता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी आज की ज़रूरतों को मार दें या कंजूसी से जिए। बचत का असली मतलब तो यही होता है कि अपनी सच्ची ज़रूरतों और अनावश्यक ख्वाहिशों के बीच अंतर को समझना। जब हम फिजूल खर्ची पर लगाम लगाते हैं तो वह पैसा धीरे धीरे एक बड़ी पूंजी बन जाता है। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी हुई है दोस्तों, कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या मोड़ आने वाला है। जब आपके पास बैंक या किसी बचत योजना में पैसा सुरक्षित रहता है तो आप किसी भी अचानक आने वाले खर्च है, जैसे बीमारी है, नौकरी छूट जाए या कोई पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाए, तो उस समय दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बच जाते हैं। पैसों की तंगी इंसान को सबसे ज्यादा तनाव देती है दोस्तों। जब आपके पास पैसे की एक सुरक्षा ढाल होती है तो आप मानसिक रूप से भी तनाव मुक्त रहते हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा हो, अपना खुद का घर बनाना हो, बुढ़ापे को स्वाभिमान से जीना हो, ये सब आज की बचत के दम पर ही तो मुमकिन हो पाता है। अब मन में सवाल अगर आ रहा है कि शुरुआत कैसे करें, तो बचत करने के लिए किसी बड़ी रकम की जरूरत नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सही आदत की जरूरत होती है। जैसे ही हाथ में पैसा आए, सबसे पहले उसका एक निश्चित हिस्सा निकालकर अलग रख दें। उसके बाद बाकी पैसों से महीना चलाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में पानी, बिजली और अनावश्यक खरीदारी को रोक कर भी बड़ी बचत की जा सकती है। बचत दरअसल दोस्तों एक निवेश है, खुद के सुकून में और अपनों की मुस्कान में। आज की गई थोड़ी सी समझदारी और संयम कल हमारे लिए गहरी राहत और सुकून का सबब बनता है। याद रखिए, आज बचाया गया एक एक रुपया कल आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए आज से ही कदम बढ़ाएं और अपने कल को सुरक्षित बनाएं। यही है आज की काम की बात।

0: मित्रों, कल हम मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और ये प्रतिवर्ष 21 जून को क्यों मनाया जाता है, ये है आज की खास बात। क्योंकि यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। दोस्तों, योग में इस दिन का विशेष आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व है। 21 जून को सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक रहती है, जो ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। भारतीय योग और आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन सूर्य की स्थिति मानव शरीर और चेतना को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह दिन प्रकृति में संतुलन और मनुष्य के बीच सामंजस्य का प्रतीक है, जो कि योग का मूल उद्देश्य भी है। यही थी आज की खास बात।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सह मेजबान कनाडा ने इतिहास रच दिया। वैंकूवर में कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर विश्व कप इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। दूसरी ओर मेजबान मैक्सिको ने ग्रुप ए के मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 32 यानी नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली है। मेक्सिको के इस विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। और साथ ही दोस्तों, आज जो मुकाबले हैं वो बता देते हैं आपको। ग्रुप सी में ब्राजील वर्सेज हिती का मैच है, जो सुबह 6 बजे शुरू हो चुका है। ग्रुप डी का तुर्की वर्सेज पराग्वे का मैच है, जो सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुका है। और ग्रुप एफ का जो मैच है वो नीदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन में स्वीडन के साथ है, जो 10:30 बजे से शुरू होगा। और ग्रुप ई का मैच है, जो जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट का जो मैच है वो 1:30 बजे से शुरू होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, हिंदी साहित्य में आधुनिक एकांकी के जनक भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की आज हम जयंती मना रहे हैं।
1: साथ ही दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रखर हस्ताक्षर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का भी आज जन्मदिन है। उनको इस मंच से जन्मदिन की बधाई देते हैं और साथ ही भारत का जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत लोकतंत्र है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ फर्श से अर्श तक का सफर कोई भी तय कर सकता है। इसी लोकतांत्रिक खूबी का सबसे जीवंत प्रेरणादायक उदाहरण है माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। जी हाँ दोस्तों, 25 जुलाई 2022 को उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और आज माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत में पैदा होने

राष्ट्रपति है। उनका यहां तक पहुंचना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि करोड़ों वंचितों आदिवासियों और महिलाओं के सपनों की उड़ान का प्रतीक है और आज हम इस मंच से उनको बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दोस्तों

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार, 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये FM सन सिटी चैनल है और अब समय हो चला है उस प्रोग्राम का जिसका नाम है एक फनकार। एक फनकार प्रोग्राम को स्टूडियो में लेकर आ चुकी हैं मीता मुल्तानी और चंद्रकला सुथार।

0: दोस्तों नमस्कार, एक फनकार प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज एक फनकार प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बेहद उम्दा और बेहतरीन अभिनेता संजीव कुमार के बारे में, और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं हम दो दोस्त। मैं चंद्रकला सुथार
1: और मैं मीता मुल्तानी, और कंसोल पर हमारा साथ दे रही है हीना खान।
0: दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संजीव कुमार के इस गीत से।
2: अरे

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, बिराम मंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: दोस्तों, 102.1 FM सन सिटी पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम है एक फनकार, और आज के फनकार हैं अभिनेता संजीव कुमार। हिंदी फिल्मों के अभिनेता संजीव कुमार का असली नाम हरिभाई जरीवाला था, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये अपने दूसरे नाम संजीव कुमार के नाम से प्रसिद्ध रहे।
8: जी हाँ दोस्तों, फिल्मी दुनिया में संजीव कुमार ने नायक, सहनायक, खलनायक और चरित्र कलाकार की भूमिकाओं को निभाया। संजय कुमार का जन्म मुंबई में 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखा करते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह अपने जीवन के शुरुआती दौर में रंगमंच से जुड़े, और बाद में उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान साल 1960 में उन्हें फिल्मालय बैनर की फिल्म

0: हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका निभाने का रोल मिल गया था।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
1: अच्छा जी,

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है।

0: कल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कितनी तन्हा हूँ मैं, कितना अकेलापन, ऐसे में कौन मेरे साथ रहे। मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी। कोई मिल गया हमेशा मेरे साथ, मेरा अपना चैनल रेडियो सन सिटी। सुनते रहिए 102.1 FM रेडियो सन सिटी, इट्स माय चैनल।
3: स्वागत दोस्तों कार्यक्रम एक फनकार में। एक फनकार में आज के हमारे फनकार हैं संजीव कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार के बारे में हम बातें कर रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी कि 1960 में उन्हें हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका निभाने का जो है मौका मिला था। और साल 1962 में राजश्री प्रोडक्शन की जो फिल्म थी आरती, उसके लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया था जिसमें वह पास भी नहीं हो सके थे। सबसे पहले मुख्य अभिनेता के रूप में संजीव कुमार को साल 1965 में एक फिल्म आई थी निशान, उसमें काम करने का मौका मिला। साल 1960 से 1968 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे।
4: फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने स्मगलर, पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, नौनियाल और गुनाहगार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: दोस्तों, साल 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में संजीव कुमार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। यह फिल्म पूरी तरह अभिनेता धर्मेंद्र पर केंद्रित थी, फिर भी संजीव कुमार धर्मेंद्र जैसे अभिनेता की उपस्थिति में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साल 1968 में प्रदर्शित फिल्म संघर्ष में उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन संजीव कुमार अपनी छोटी सी भूमिका के जरिए दर्शकों में प्रसिद्ध रहे।
5: हाँ, और दोस्तों, इसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंग, सत्यकाम और अनोखी राज जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए संजीव कुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां वह फिल्म में अपनी भूमिका खुद चुन

0: सिटी
1: जो बातें सुनता है जो बातें करता है
0: FM Sun City
2: जोधपुर FM हार्ट बीट ऑफ जोधपुर
3: नए अंदाज में
4: जो दिन भर घर घर में गूंजती है
1: ट्यून कीजिए FM Sun City
5: रेडियो Sun City।
6: दोस्तों साल 1970 में आई फिल्म दस्तक में संजय कुमार के लाजवाब अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और 1970 में एक फिल्म आई थी खिलौना उसकी जबरदस्त कामयाबी के बाद संजय कुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान उन्होंने बना ली थी और 1972 में एक फिल्म आई थी कोशिश उसमें भी उनके अभिनय का नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला था।
7: फिल्म कोशिश में संजीव कुमार ने गूंगे की भूमिका निभाई थी मित्रों। बगैर संवाद बोले सिर्फ आंखों और चेहरे के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना संजीव कुमार की अभिनय प्रतिभा का ये एक ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। इस फिल्म में उनके लाजवाब अभिनय के लिए उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। यह फिल्म एक ऐसे दंपत्ति की प्रेरणादायक यात्रा है जो बोल और सुन नहीं सकते कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए यह अपने संघर्षों और प्रेम के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बनाने और अपने परिवार को संवारने का प्रयास करते हैं।
6: जी दोस्तों खिलौना दस्तक और कोशिश जैसी फिल्मों की कामयाबी के बाद संजय कुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा बैठे। अपनी फिल्मों की कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्म परिचय में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार की और उससे भी दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। इस बीच आई सीता और गीता अनामिका और मनचली जैसी फिल्मों में अपने रूमानी अंदाज के जरिए दर्शकों के बीच प्रसिद्ध हो गए वो।

0: दोस्तों, साल 1974 में प्रदर्शित फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार ने अभिनय और विविधता के नए आयाम हैं जो दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 9 अलग-अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। फिल्म में संजीव कुमार ने लूले, लंगड़े, अंधे, बूढ़े, बीमार, कोढ़ी, हिंजड़े, काजू, डाकू, जवान और प्रोफेसर के जो किरदार है उसको निभाकर जीवन के 9 रसों का रुपहले पर्दे पर है जो साकार कर दिया था उन्होंने।
1: यह फिल्म मित्रों उनके हर किरदार की अलग खासियत की वजह से जानी जाती है, लेकिन इस फिल्म में उनके एक हिंजड़े का किरदार आज भी फिल्मी दर्शकों के मस्तिष्क पर छा जाता है। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए संजीव कुमार ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। तो सुनते हैं उसी फिल्म का ये गीत।

0: दोस्तों एक फनकार में संजीव कुमार के बारे में बातें हो रही हैं। अभिनेता संजीव कुमार ने 1975 में प्रदर्शित रमेश सिप्पी की सुपरहिट फिल्म शोले में वह फिल्म अभिनेत्री जया भादुड़ी के ससुर की भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके थे। हालांकि संजीव कुमार ने फिल्म शोले के पहले जया भादुड़ी के साथ कोशिश और अनामिका में नायक की भूमिका निभाई थी और साल 1977 में प्रदर्शित फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्हें महान निर्देशक सत्यजीत रे के साथ काम करने का मौका मिला।
1: इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। 1971 में एक फिल्म आई थी पारस, जिसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो सुनते हैं इसी फिल्म का अगला गीत।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: श्रोताओं आपने ट्यून किया है 102.1 एफएम आकाशवाणी जोधपुर और कार्यक्रम में एक फनकार जिसमें आज हम बात कर रहे हैं संजीव कुमार की।
2: दोस्तों संजीव कुमार ने मुक्ति, त्रिशूल, पति पत्नी और वो, देवता, जानी दुश्मन, गृह प्रवेश, हम पांच, चेहरे पे चेहरा, दासी, विधाता, नमकीन, अंगूर और हीरो जैसी कई फिल्मों में काम किया है और दर्शकों के दिलों पर राज किया है। दोस्तों भारतीय सिनेमा जगत में संजीव कुमार को एक ऐसे बहुआयामी कलाकार के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने नायक, सहनायक, खलनायक और चरित्र कलाकार की भूमिकाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया।
1: संजीव कुमार के अभिनय में एक विशेषता ये रही कि वह किसी भी तरह की भूमिका के लिए हमेशा फिट बैठते थे। बाद में संजीव कुमार ने गुलजार के निर्देशन में आंधी, मौसम, नमकीन और अंगूर जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया। वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म अंगूर में संजीव कुमार ने दोहरी भूमिका निभाई। संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी वे सम्मानित किए जा चुके हैं। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म आंधी के लिए सबसे पहले उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: वर्ष 1976 में एक फिल्म आई थी संजीव कुमार की अर्जुन पंडित, और उसमें बेमिसाल अभिनय के लिए वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजे गए। दोस्तों, संजीव कुमार एक ऐसे जादुई कलाकार थे जिन्होंने हीरो की बंदी बधाई परिभाषा को ही बदल दिया। उन्होंने कभी भी पर्दे पर लार्जर देन लाइफ दिखने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो जिस भी किरदार में ढले उसे आम इंसान के बेहद करीब ले आए।
1: जी हाँ दोस्तों, बिना हाथों के सिर्फ आंखों और आवाज के दम पर, और वो बेबसी और बदले की आग दिखाई दी जो

इतिहास बन गई इस फिल्म में। और आंधी और मौसम की बात की जाए तो संजीदगी और चेहरे पर ठहरे हुए रोमांस की वो अनूठी मिसाल जिसे आज भी याद किया जाता है।

0: Gelmeyi fırsat kerat edin.
1: दोस्तों, संजीव साहब ने हर उम्र, हर रंग और हर जज्बात को पर्दे पर जिया है। उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था और जब वो बोलते थे तो लगता था कि सीधे दिल से बात कर रहे हैं। अंगूर फिल्म, जहां उनकी कमाल की कॉमेडी टाइमिंग ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। वक्त के सितम भी अजीब होते हैं, चेहरे बदल जाते हैं पर यादें और किरदार अपनी जगह से कभी नहीं हिलते। अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाने वाले इस शानदार कलाकार ने 6 नवंबर 1950 को इस दुनिया को अलविदा कहा।
2: जी हाँ दोस्तों, भले ही वे इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन असमय अलविदा तो कह गए और अपनी अदाकारी की जो विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं वो सदियों तक इस सिनेमाई दुनिया को महकाती रहेगी दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये था प्रोग्राम एक फनकार, जिसमें हमने बातें की अभिनेता संजीव कुमार के बारे में और उनकी फिल्मों के गीत हमने मिलकर सुने। अब इस सफर को देते हैं यही विराम। सफर आपने तय किया चंद्रकला सुथार,
1: अमिता मुल्तानी के साथ
2: और कंसोल पर साथ दिया हिना ने। फिर मिलेंगे दोस्तों, दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनिए ये वाला गीत।
1: नमस्कार।
3: ओ ठंडे ठंडे पानी।

102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये एफएम सन सिटी चैनल है और साथियों आपके लिए पेश प्रोग्राम अंदाजे बयां।

तुमने बुलाया और हम चले आए, मगर हथेली पर दिल नहीं, जज्बातों से भरे अल्फाज जिनमें कभी गीत कहीं नज्म और शेरो शायरियों के लुत्फ समाये हुए हैं। सभी सामाइन को मेरा आदाब। इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। गजलों के इस सफर में ये पहली नज्म आपकी नजर।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिराम मंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
4: जब यादों के साए साथ होते हैं तो चारों ओर बस्ती नजर आती है। तन्हाई में भी दिल बातें करता है, खुद ही सवाल और खुद ही जवाब बन जाते हैं। लेकिन साए तो साए होते हैं, सिर्फ साथ चलते हैं या आंखों में आंसू बन छलकते हैं। लोग कहते हैं कि रोने से कुछ नहीं मिलता, पर मेरा मानना है कि रोने से सुकून ज़रूर मिलता है।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
3: रहे बरसों उदास तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा, सिर्फ एक दिन मुस्कुराने का फैसला क्या किया तो लोग वजह पूछने लगे।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर

राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर

0: आफ्टर जोधपुर।
1: इस समय आपने ट्यून किया है एफएम सन सिटी चैनल। हर आह में दर्द के साथ अंदाज भी है, बातों में बात और फिर खुशबू की तरह फैल जाना भी जरूरी है। जिंदगी में कुछ लम्हे कम वक्त के लिए साथ होते हैं मगर लाजवाब होते हैं। बस मैं भी उन्हीं लम्हों को तलाश करती रहती हूँ। साथ तुम्हारा हो तो बात बन जाएगी। मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक तू साथ है तब तक जिंदगी चाहिए। इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अंदाज़े बयां अपनी दोस्त हिना के साथ।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अंदाजे बयां। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनाहगार हो गए।

0: स्त्री प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने जोधपुर मोबाइल 9829027065।
1: इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अंदाजे बयां। आपने ट्यून किया है FM सन सिटी चैनल। वक्त से नजदीकियां और वक्त से ही फासले कायम होते हैं। उन फासलों को अगर हवा दी जाए तो किसी गहराई खाई से कम नहीं होते। मगर मोहब्बतों का उसूल तो यही है, पास रहो, दिल में रहो और जितने गुनाहगार होते रहते हैं उतने ही प्यार के रंग गहरे होते रहते हैं। किसी की तलाश में ना निकलो, किसी की तलाश में ना निकलो, लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं।

चाहत के समंदर बहुत गहरे होते हैं, कभी तन्हाई, कभी खलेश, कभी ख्वाहिश तो कभी गुजारिश। जिंदगी में ऐसे ही कई इम्तिहान होते रहते हैं, मगर नज़रों की गहराई और होठों की खामोशी हर ख्वाहिश को भर देती है। इस प्यार की नदी में बैठकर अक्सर लोग पार कम डूबते ज़्यादा हैं। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है।

दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाज़े बयां और आपके लिए आज का ये प्रोग्राम पेश कर रही थी आपकी दोस्त हिना। अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है, छोड़ना और भी मुश्किल और भूल जाना नामुमकिन। तो साथियों आपको भी भूलना नामुमकिन है। हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, लेकिन अभी वक्त का तकाजा ये कहता है कि आपसे

आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे बयां। ये FM सन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजने को हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थान

0: पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और A.R. रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली 6, इस फिल्म से। ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, A.R. रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर टू से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको उस शब्द चुन

ने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुनझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया, और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है, और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज़्यादा

चाहने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतजार ज्यादा करवा रही है बारिश, लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताजा करना चाहें तो लिख भेजें, बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

0: रंग जब दिल की ज़मीन पर उतरने लगते हैं तो खामोश लम्हे भी बोलने लगते हैं। कला की दुनिया का करिश्मा कुछ ऐसा है कि बेजान से कैनवास भी महकने लगते हैं।
1: आदाब, सलाम और ढेर सारी मोहब्बतों के साथ आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का इस्तकबाल है। आप सुन रही हैं नारी वाटिका, जहां हम बातें करते हैं हुनर की, हौसलों की, रचनात्मकता की और उन रंगों की जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। मैं आपकी अपनी रेडियो सखी ज्योत्सना और मेरे संग है
0: मकसूदन। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हर रंग में कोई एहसास बसता है, हर रेखा में कोई राज छुपा रहता है। मंडला की दुनिया यूं ही दिलों को नहीं भाती, इसके दायरे में सुकून का एक जहां बसता है। सखियों, कला सिर्फ रंगों और नक्शों का नाम नहीं, बल्कि दिल के हाल को बयां करने का एक खूबसूरत जरिया भी है। ऐसे ही एक दिलकश कला, मंडला आर्ट। मंडला यानी दायरा, चक्र और मकमूलियत। ये फन हमें कुदरत, कायनात और अपने अंदर की दुनिया को जोड़ता है।
1: मकसूदन, मंडला आर्ट की जड़ें हमारी तहजीब और रूहानी विरासत से जुड़ी हुई

0: हैं। सदियों से मंदिरों, इबादतगाहों, तस्वीरों और सांस्कृतिक धरोहरों में इसकी झलक नजर आती रही है। यह सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक रूहानी सफर का एहसास भी है।
1: मंडला की सबसे दिलकश बात इसका तवाजुन और खूबसूरती से सजा हुआ अंदाज है। एक छोटे से मरकज बिंदु से शुरू होकर दायरे, बेल बूटे, फूल पत्तियां और तरह तरह के नक्शे मिलकर एक ऐसी शाहकार तख्लीक करते हैं जिसे देखकर दिल बाग बाग हो जाता है।
0: बिंदुओं की महफिल में जब रंग उतर के आते हैं, मन के वीराने में भी गुलशन नजर आते हैं। फिक्र की धूल कहीं दूर बिखर जाती है और सुकून के चिराग खुद ब खुद जल जाते हैं।
1: क्या बात
0: सखियों सखियों, शायद यही वजह है कि आज की मसरूफ जिंदगी में मंडला आर्ट सिर्फ सजावट तक महदूद नहीं रही, और यह अपने आप मुलाकात करने से दिल को राहत देने और जहन को ताजगी बख्शने का भी एक खूबसूरत जरिया बन चुकी है।
1: बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना। रंग बिरंगे मंडला डिजाइनों के जरिए लोग अपनी तख्यल दुनिया को रंगों में ढाल रहे हैं। कागज, कैनवास, लकड़ी, पत्थर और कई दूसरी सतहों पर कला की अपनी अलग पहचान बिखेर रहे हैं, है ना?
0: बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है मकसूदन इस कला की, इस कला को सीखने के लिए किसी बड़ी तालीम या खास माहिर होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी लगन और दिल में कुछ नया करने का जज्बा हो तो हर शख्स अपनी तख्लीक को एक नई पहचान दे सकता है।
1: रंगों से जब ख्वाबों की तहरीर बनती है, मेहनत की हर बूंद तकदीर बनती है। छोटी छोटी बूंद जब साथ सफर करती है, तब कहीं जाकर एक दिलकश तस्वीर बनती है।
0: बिल्कुल, जिंदगी भी मंडला जैसी एक प्यारी दास्तां है। हर बिंदु में छुपा कोई अरमा है। रंग, सब्र और मेहनत जब साथ मिल जाते हैं और साथ निभाते हैं, तब जाकर हर सपना एक हंसी जहां बन जाता है। सखियों, मंडला हमें ये पैगाम देता है कि छोटी सी शुरुआत भी बड़ी खूबसूरती की वजह बन सकती है। जिंदगी के हर रंग को अपनाइए, हर लम्हे को महसूस कीजिए और अपने ख्वाबों को तख्लीक के रंगों से खूब सजाइए।

0: हर बिंदु में छिपी होती एक नई कहानी, रंगों से सजती है मन की रवानी, जो दिल की खामोशी को भी आवाज दे जाए, वही तो है कला जो रूह तक उतर जाए। सखियों, डोट मंडला आर्ट आज केवल कैनवास तक सीमित नहीं रहा, पत्थरों, लकड़ी, ट्रे, कोस्टर, दीवार, सजावटी और मिट्टी बर्तनों पर इसकी खूबसूरती झलक उठती है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इस कला को एक नई पहचान और एक नई उड़ान दी है। आज कई युवा और महिलाएं घर बैठे इस कला के जरिए अपनी सलाहियत को निखारती हैं और स्वरोजगार की राह भी बना रही है ना ज्योत्सना?
1: बिल्कुल, ये कला सिर्फ रंगों और डिजाइनों तक सीमित नहीं है मकसदन, बल्कि आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता का भी बेहतरीन उदाहरण है। एक साधारण सा बिंदु जब दूसरे बिंदुओं से जुड़ता है तो एक अद्भुत आकृति जन्म लेती है। ठीक वैसे ही छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी कामयाबी की तस्वीर बनाते हैं।
0: बिंदुओं की महफिल में जब रंग उतर आते हैं, मन के वीराने भी गुलशन नजर आते हैं, फिक्र की धूल कहीं दूर बिखर जाती है और सुकून की चराग खुद ब खुद जल जाते हैं, है ना?
1: बिल्कुल, डॉट मंडला आर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका मानसिक प्रभाव भी है मकसूदन। ये कला मन को सुकून देती है, ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है और तनाव को कम करने में मदद करती है। एक एक बिंदु को धैर्य पूर्वक सजाने की प्रक्रिया व्यक्ति को शांति और संतुलन का एहसास कराती है।
0: यही तो वजह है कि बहुत से लोग इसे आर्ट थेरेपी भी मानते हैं। जब हम रंगों और बिंदुओं की इस दुनिया में खो जाते हैं ना, तो कुछ पल के लिए तमाम फिक्रें जो है वो पीछे छूट जाती है, मन को नई ताजगी महसूस होती है और जीवन भी थोड़ा खुला खुला साफ साफ नजर आता है कि अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, है ना?
1: बिल्कुल, एक एक बिंदु की तरह अपने जीवन के हर छोटे प्रयासों को भी उतनी ही अहमियत दे सकियों, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा बिंदु ही पूरी तस्वीर को सबसे बड़ी खूबसूरती से सजा देता है।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी।

0: सखियों, आज हम आपको ले चलेंगे चित्रकला और पेंटिंग की उस रंगीन दुनिया में जहां कल्पना को परवाज मिलती है। चित्रकला के एक आयाम को लेकर श्रुति लोहिया से भेंटवार्ता कर रही है मेरी सखी ज्योत्सना। इन्होंने रेजिन आर्ट के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है।
1: नमस्ते श्रुति लोहिया जी।
2: नमस्कार।
1: आपका आकाशवाणी जोधपुर के नारी वाटिका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप एक रेजिन आर्टिस्ट हैं। जब भी हम कोई नया शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ये है क्या, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि रेजिन आर्ट होता क्या है।
2: जी बिल्कुल, रेजिन आर्ट दो केमिकल्स को मिला करके आ गया एक आर्ट है। ये प्योरली केमिकल्स हैं, ठीक है। तो दो तरीके के पदार्थ होते हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर। जब हम दोनों को मिलाते हैं उसके अंदर और भी आर्टिस्टिक चीजें मिलाते हैं, उसका जो एंड में हमें दिखाई देता है करीब 12 से 24 घंटे बाद में ग्लास जैसी फिनिश आ जाती है, जिसको आप बहुत शाइनी रूप में देख सकते हैं। तो वो जो आर्ट है वो रेजिन आर्ट है
1: जी।
2: हम इसके अंदर बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, जैसे प्रिजर्व करना चीजों को, अलग अलग तरीके के आर्ट फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। रेजिन बेसिकली एक केमिकल है जिसके नीचे कुछ भी किया गया है उसको इससे हमने प्रोटेक्ट कर दिया है।
1: जी जी,
2: सिंपल वे में अगर कहा जाए।
1: अच्छा, तो आपका इस कला के प्रति रुझान कैसे हुआ, कब से आपने स्टार्टिंग की?
2: तो एक्चुअली बेसिकली मैं बचपन से ही आर्ट की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन रही हूँ।
1: जी जी,
2: स्केचिंग, ड्राइंग, एक्रेलिक पेंटिंग, वेरियस काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, स्पेशली खुद करने वाले आर्ट फॉर्म्स जहाँ कहीं सीखने ना जाना पड़े,
1: बिल्कुल
2: उसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। क्योंकि हम लोग के बचपन में काफी हमें फ्री समय मिलता था
1: जी,
2: और काफी घर में ऐसी चीजें पड़ी होती थी जिनसे हम आर्ट फॉर्म्स कर सकते हैं, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत मोटिवेट करते थे, तो वहां से आर्टिस्टिक स्वभाव डेवलप हुआ। रेजिन आर्ट कुछ साल पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग, अगर आप देख रहे हो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे
1: जी, जी।
2: और जहां देखे रेजिन आर्ट की चीजें दिखाई देती थी
1: जी।
2: उसको देख करके वापस इंटरेस्ट आया कि मैं वापस से नए फॉर्म्स ऑफ आर्ट को सीखूं। तो मैंने भी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पे वापस से थोड़ा सा रिसर्च किया और खुद से ही रेजिन आर्ट को बनाना चालू किया एक्सपेरिमेंटल तौर पे। सबको बहुत पसंद आने लगा जब गिफ्ट देते थे, उन्होंने मुझे वापस बनाने के लिए मोटिवेट किया, बच्चों ने, फैमिली ने मोटिवेट किया, और धीरे धीरे अपने आप ये प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। आई वुड से कोविड के जस्ट बाद में।
1: जी जी,
2: तो तब से प्रोफेशनली कैसे ग्रेजुअली चालू हुआ मुझे डेट भी याद नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो आपने अभी बातें की कि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं और बहुत अलग अलग से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जो रेजिन आर्ट में यूज होती है, और इसमें कुछ सामग्रियां भी?

0: यूज होती होंगी, टूल्स भी यूज होते होंगे, उनके बारे में भी हमें बताइए।
1: बिल्कुल। तो जैसे आपने टेक्निक्स का मुझसे सबसे पहले पूछा, आप जब देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, रेजिन में आपको ओशियन का लुक दिखाई देता है, जैसे कोई समंदर है,
0: जी
1: तो वो समंदर सिर्फ नीला रंग डालने से समंदर नहीं बन जाता है, उसमें
0: जी
1: ओशियन की पूरी टेक्निक इन्वॉल्व होती है कि किस समय पे हमें जहां पे रेत दिखती है उधर हमें पोर करना है।
0: जी
1: पोरिंग से मेरा मतलब रेशियो में मिक्स करने के बाद डालना,
0: जी
1: तो किधर रेत के वहां पे कब डालना है, जहां नीला समंदर दिखना है वहां कब डालना है। सबसे महत्वपूर्ण, जब उसकी वेव्स जो लहरें हैं उसका जो एग्जैक्ट लुक चाहिए, कितने उसमें फोम बन रहे हैं, कितने उसमें बबल्स दिख रहे हैं, कि वो ओरिजिनल जब आप दूर से देखें,
0: पूरा विजुअलाइज होना चाहिए।
1: बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि अब ये तो मैं उसी समंदर को देख रही हूँ, एकदम प्रत्यक्ष, एकदम लाइव।
0: जैसे ऐसा लगे कि बिल्कुल सामने है और
1: बिल्कुल। तो
0: हम फील
1: ऐसी
0: आना चाहिए।
1: तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक जैसे ओशियन टेक्निक हुई। एक्चुअली देखिए, रेजिन की टेक्निक्स भी हमने ही नाम दिया है, जितने हमने उसके अंदर चीजें क्रिएट
0: जी
1: करते गए
0: जी
1: और उनको क्रिएट करने में जो बारीकियों का ध्यान रखते गए, उन टेक्निक्स का सब आर्टिस्ट ने एक एक करके नाम देते गए। फिर लेयरिंग की टेक्निक होती है, प्रिजर्वेशन जो सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं आजकल ट्रेंड में है, लोग गिफ्ट किए हुए फ्लावर्स, शादी में पहनी हुई वरमालाएं,
0: जी
1: इनको प्रिजर्व करवाते हैं। छोटे बेबीज की फर्स्ट सोनोग्राफी,
0: जी
1: बेबी
0: जी
1: का फर्स्ट टूथ, फर्स्ट हेयर का लॉक,
0: ओहो
1: अम्बिलिकल कॉर्ड,
0: जी
1: यहाँ तक मतलब बहुत कुछ चीजें प्रिजर्व। तो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक
0: मेमोरीज
1: है,
0: रखने के लिए।
1: मेमोरीज प्रिजर्व करने के लिए। पास्ट अवे जो लोग हैं उनकी भी मेमोरीज प्रिजर्व करते हैं,
0: अच्छा
1: उनकी पुराने जैसे चश्मे हैं,
0: जी
1: वॉच है, ऐसी कुछ चीजें जो उनको देख करके बार बार उनकी याद आती है और
0: जी
1: वो डीके ना हो विद टाइम।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी लकड़ी की फ्रेम के अंदर उन्हें रखा और रेजिन डाल दिया और प्रिजर्व हो जाएगा। इसमें बहुत सारी टेक्निक इन्वॉल्व है
0: जी
1: जो समय आते और कहीं प्रोफेशनल से आप सीखते हैं तो सकते हैं।
0: जी
1: फिर लेयरिंग की एक टेक्निक होती है, अलग अलग लेयर्स में जब हम इसको डालते हैं तो वो चीज ऐसे लगती है कि मल्टी डिमेंशनल है,
0: जी 3D की
1: कि थ्री
0: जैसे
1: डी के जैसी।
0: जी
1: फिर जब आपने 3D बोला तो देर इज अनादर 3D टेक्निक जिसमें हम चीजें उभरी हुई दिखती हैं, एक मल्टी डिमेंशनल दिखती है, ऊपर से फ्लैट होती है। 3D मतलब जब हाथ से फील करते हैं, एवरीथिंग इज 3D, सब कुछ 3D है,
0: जी
1: जैसे फूल हुए या कोई और आकार हुए जो ऊपर से 3D दिखाई दे रहे हैं, वो पूरे हाथ से ही बनाए जाते हैं,
0: जी
1: उसमें कोई मशीन और टूल्स यूज नहीं होते। तो दिस इज द टेक्निक पार्ट, ये जो आपने मुझसे तकनीकियां पूछी थी इसकी। देन कम्स द मटेरियल्स जो इसके अंदर हम यूज
0: जी
1: करते हैं।
0: जी
1: तो मटेरियल्स में अनगिनत है एक्चुअली, कोई भी चीज डाल सकते हैं रेजिन के अंदर, बट जो बेसिक है वो मैं आपको बता सकती हूँ। कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे कलर्स,
0: जी
1: हम एक्रेलिक पेंट्स यूज करते हैं पेंट करने में, इसमें एक्रेलिक पेंट्स नहीं होते, रेजिन के स्पेसिफिक टाइप के पिगमेंट आते
0: अच्छा
1: हैं।
0: जैसे
1: पिगमेंट कोई लिक्विड फॉर्म में होता है और कोई पाउडर फॉर्म में होता है,
0: जी
1: ऐसे ही रेजिन के लिए भी स्पेशलाइज
0: जी
1: उसी में यूज करने वाला पिगमेंट आता है,
0: जी
1: वही यूज करना चाहिए। हर कोई चीज यूज नहीं कर लेना चाहिए, उससे डिजायर्ड रिजल्ट जैसे हमें चाहिए वैसा आउटपुट नहीं आता है।
0: जी
1: ठीक है, तो जो पिगमेंट्स, जो चीजें रेजिन के साथ ब्लेंड होने के लिए ऑलरेडी मार्केट में ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से आती हैं,
0: जी
1: उन्हीं को उनके साथ हमें यूज करना चाहिए, उसमें अलग अलग लुक्स देने के लिए जैसा हमें चाहिए। जैसे ओशियन मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे हमें चाहिए होते कि हमें कुछ लुक क्रिएट करना है तो उसी को यूज करना चाहिए। फिर आपने मुझसे उपकरणों के बारे में पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि
0: जी
1: लोग घर में रेजिन आर्ट चालू कर देते हैं रेजिन ऑर्डर करके,
0: जी
1: उपकरण को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
0: टूल्स हैं उसके।
1: टूल्स। एक तो मिक्सिंग के लिए क्या यूज करना, मिक्सिंग कैसे करना, वेइंग मशीन।
0: जी
1: अपने चम्मच से मेजर करके आप नहीं डालते
0: जी
1: कि 2 चम्मच एक ले लिया, 1 चम्मच एक ले लिया और हम शुरू हो जाए, नहीं। तो वेइंग मशीन, ठीक है, डिस्पोजेबल ग्लासेस,
0: जी
1: स्टिक्स, ग्लव्स, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टूल,
0: जी
1: नेकेड हैंड्स से,
0: कभी नहीं
1: अपने
0: करना
1: हाथों
0: है
1: से कभी नहीं करना चाहिए,
0: बिकॉज इट इज केमिकली।
1: बिल्कुल। और ये हजार्डस है, दिखने में बहुत खूबसूरत है पर इसके खुद के भी नुकसान है। तो ग्लव्स पहनने के लिए, मुंह पे मास्क, अगर आप हॉबी के लिए करते हैं तो जो N95 मास्क हम लोग कोविड में लगाते थे वो भी सफिशियंट है, अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं इसके इंसुलेटेड मास्क होते हैं,
0: जी
1: क्योंकि काफी देर आपको पहने रहना करना पड़ेगा जितनी देर आप काम करेंगे. देन आई वेयर, चश्मे की तरह आंखों में बिल्कुल उछलना नहीं चाहिए. और आप सोचोगे क्यों उछलेगा, बट हम किचन में भी काम करते हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो कई बार कुछ चीजें आंखों में उछल के आती है. देन बबल टॉर्च, इसमें बहुत बारीक बारीक बबल्स खुद से बंद है. जैसे हम कोई दो चीज मिलाते हैं चम्मच से, उसमें झाग बनते हैं, जब हम डालेंगे तो वो बबल्स वहीं रह जाएंगे. तो फ्लेम टॉर्च आती है, जैसे हमारा लाइटर होता है जिसमें से आगे से आग

0: गलती है। वैसी फ्लेम टॉर्च होती है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इन चीजों के ये बेसिक्स हैं, इनके बिना मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करती रेजिन आर्ट घर पे एज अ हॉबी ऑल्सो चालू करना।
1: जी,
0: आज मुझे कुछ नया बनाना है
1: जी,
0: तो उस दिन एक तो पहले हमारा जो मूड होता है वो हमें बहुत इंस्पायर कर रहा होता है कि आज कैसा मूड है मेरा। जैसे आज मैं जब सुबह मेरे स्टूडियो गई थी तो आज मेरे मूड में कुछ ऐसा आया कि कुछ ऐसा देखूं जिसको देख के मेरी आंखों में

0: कुछ ऐसा देखूं जिसको देख के मेरी आंखों में चमक आ जाए
1: जी।
0: तो मैंने एक लड्डू गोपाल की तस्वीर से शुरुआत करी कि सबसे अच्छा दिन शुरुआत होता है जब एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा है। तो हमने उसके साथ में चालू किया कि हम ये हमारे स्टूडियो के लिए ही बनाते हैं, ये किसी प्रोफेशनली ऑर्डर का पीस नहीं था। तो हम जब हमारे खुद के लिए बना रहे होते तो हम पूरी फ्री फ्लोइंग क्रिएटिविटी से जा रहे होते हैं। तो हमने चालू किया उनके फेस को विजुअलाइज करके उसको ड्रॉ करना, पेंट करना, देन उसके बाद में उनके ऊपर हम कैसे उनका श्रृंगार करेंगे। जब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेयर बाय लेयर जाते जाएंगे तो आज हमने ऐसे जब हम ड्रॉ करते हैं पेपर पे लिखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है,
1: जी, जी,
0: आज शुरू कर रही हूँ, ये खत्म होगा 4 दिन में मेरा प्रोजेक्ट, तो 4 दिन में 4 बार तो मैं नहीं चेंज हो सकती हूँ, आई हैव टू कुछ सोचूंगी और उसी पे टिकी रहूंगी। तो मैंने जो विजुअलाइज किया कि मैं इस पे कुछ 3D बना करके फूल भी लगाऊंगी, तो ये दूसरों से जो हम जो मार्केट में जो चीजें देखते हैं उससे कुछ अलग दिखाई देगा कि श्रुति लोहिया का बनाया हुआ पीस है, ये मेरी एक सिग्नेचर स्टाइल आप समझ लें। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ मास्टरपीस बन के निकल के आता है और काफी बार क्लाइंट से भी हमें इंस्पिरेशन मिलती है, वो अपना एक छोटा सा आइडिया देते

0: है जो आपने बनाया हो? और
1: हाँ बिल्कुल है, मैंने अभी रिसेंटली एक
0: क्लाइंट की डिमांड पर हो?
1: क्लाइंट की डिमांड पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मोर मैंने बनाया। क्लाइंट का सिर्फ ये एक थॉट था कि मुझे एक मोर चाहिए
0: जी,
1: और बहुत ही खूबसूरत हो दिखने में, और कोई मेरे घर में आके उस वॉल पीस को देखे तो बस उसी को देखता रह जाए।
0: जी,
1: ऐसा
0: जी.
1: नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल मोर नदी के पास है, वैसा मोर नहीं दिखना चाहिए। तो कुछ इमेजिन करके तो मैंने उससे एक इमेज क्रिएट की, फोटोग्राफ क्रिएट करी कि एक मोर है जो जंगल में रात में एक नदी के पास में है, और उस मोर की रोशनी से उसके आसपास का जंगल ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो फायर पे है, बट पॉजिटिव फायर मतलब, बट वो रोशन हो रहा है उस मोर की चमक से। और जब उसको हमने पूरा क्रिएट किया उसके बाद में हम खुद भी अचंभित थे जो आउटकम आया।
0: और श्रुति जी, जब आपने बात की लड्डू गोपाल की, तो मेरा अगला प्रश्न यही है आपके साथ में। तो हमारे भारत की पारंपरिक कलाएं इतनी सुंदरता और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती हैं, वहीं रेजिन आर्ट एक आधुनिक कला है। तो आपको लगता है कि पारंपरिक भारतीय कलाओं और रेजिन आर्ट का सुंदर समन्वय हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है, और मैं अपने प्रोडक्ट्स में भी उसकी काफी कोशिश करती हूँ कि काफी जो हमारे भारतीय ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे मंडला, फड आर्ट, ये सब चीजों का थोड़ा थोड़ा रूप हम अपने इसमें कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि उनका समावेश हम करें, क्योंकि ये मॉडर्न आर्ट फॉर्म कोई काम का नहीं जब तक उसमें ट्रेडिशनल चीजें नहीं मिलेगी तो, और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट भी नए कैसे बनेंगे। तो हम लोग जैसे जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, जब उनको ये चीजें हम क्रिएट करते हैं तो उन्हें भी आइडियाज मिलते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं, और वो आर्ट फॉर्म लॉस्ट नहीं होता है, नहीं तो गुम हो जाएगा कहीं ना कहीं।
0: जी, बिल्कुल।
1: तो प्रयास जरूर रहता है कि अपने जो भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसको उसके अंदर ले। अब ये आर्टिस्ट की कला है कि वो कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता है, और यही क्रिएटिविटी है।
0: श्रुति जी, जो सखियां हमें अभी सुन रही हैं, उनके मन में भी आज की हमारी जो वार्ता है उसको सुनकर रेजिन आर्ट को एक रोजगार या स्वरोजगार या हॉबी के रूप में अपनाने का विचार आए, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगी, क्या मार्गदर्शन देंगी, क्या टिप्स देंगी?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी चीज भी है, अगर चार लोग भी इंस्पायर होते हैं आज हमें ये सुनकर के कि हम एक नई चीज ट्राई करें। सबसे पहले अगर प्रोफेशनली लेते हैं बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा जरिया बन सकता है इनकम का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चलन में है। उसके अलावा जो मिड एज की वुमेन है उनके लिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बहुत फ्री समय होता है, और एक नया आर्ट फॉर्म ट्राई करने से आप उन सब चीजों से वापस अपने आप में एक नई एनर्जी और ऊर्जा ला सकते हो। बहुत सिंपल तरीकों से आप स्टार्ट कर सकते हो, काफी बार ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, काफी वीडियोस अवेलेबल हैं सिखाने के लिए। अगर आप एक्सपेरिमेंटल हो, रिस्क लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती कि दो प्रोडक्ट खराब भी होंगे पर मैं खुद ट्राई करूंगी, तो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आप किट आते हैं रेजिन स्टार्टर किट, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो वीडियोस हैं उनमें जितनी भी जानकारी दी हो बारीकी से, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और कुछ ट्राई करें। अगर आपको लगता है नहीं आप इतने एक्सपेरिमेंटल नहीं हो, इतने रिस्क वाले नहीं हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्कशॉप हो रही होगी, आप जाएं उसमें। थोड़े रुपए खर्च होंगे पर जो वहां पे सीखोगे वो अपने साथ लेके आओगे, तो जो खर्च करोगे उसका तो बना के लाओगे, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कुछ बिगाड़ने नहीं वाली हूँ।
0: जी बिल्कुल,
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी दो में से एक तरीका आप चूज करो, बट शुरू करो।
0: जी,
1: देयर इज नो हार्म, शुरुआत जरूर करनी चाहिए।
0: जी श्रुति जी, आप क्या बच्चों को भी ये करना चाहिए, क्योंकि एक आर्ट फॉर्म तो स्कूल से सिखाया जाता है, ऐसी कोई एज लिमिट है?
1: हाँ बिल्कुल, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, और कोई भी बच्चों के लिए केमिकल रेकमेंडेड नहीं है। जिस केमिकल को यूज करने के बाद ग्लव्स मास्क मैंडेटरी है, जरूरी है, तो ये तो अपने आप ही समझ आ गई कि बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनकी इम्यूनिटी बड़ों के कंपैरिजन में बहुत नाजुक होती है। और यहाँ तक सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन उन्हें भी नहीं करना चाहिए, और या कोई बीमारी हो आपको, कैंसर पेशेंट हो या कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी हो, मैं नहीं एडवाइस करूंगी उन लोगों को रेजिन आर्ट करने के लिए, क्योंकि केमिकल ही है।
0: जी,
1: आर्ट है, मजा आता है करने में, वो एक सेकेंडरी चीज है।
0: जी श्रुति जी, आज आपने रेजिन आर्ट की बारीकियों, इसकी संभावना और इससे जुड़े अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हमारे श्रोताओं को, विशेषकर उन सखियों के लिए जो अपनी क्रिएशन को नई पहचान देना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगी?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं सभी महिलाओं से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कभी कम मत समझिए। ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो और कुछ ना कुछ बनाओ, किसी को गिफ्ट करो, को पर्सनल एक टच ऐड करो हर चीज को। मजार से खरीद करके चीजें देने से तो बेहतर है कि हम खुद ही बना करके दें, 19-20 होगा, बट शुरुआत करें। शुरुआत मतलब पहला कदम रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करें।

0: और हर औरत क्रिएटिव होती ही है,
1: बिल्कुल
0: जो किचन में क्रिएटिव हो सकती है, नए पकवान रोज बना सकती है, वो किसी भी एस्पेक्ट में क्रिएटिव हो सकती है। तो एक्सप्लोर करो अपने उस अंदर के छिपे हुए बच्चे को भी जिसमें वो क्रिएटिविटी है, एंड स्टार्ट।
1: जी थैंक यू श्रुति जी, आप स्टूडियो में आए, आपने इतना अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
2: सखियों, अभी आपने मेरी सखी ज्योत्सना की रेजिन आर्ट की कलाकार श्रुति लोहिया से भेंटवार्ता सुनी। उन्होंने हमारी सखियों के साथ रेजिन आर्ट के बारे में खास जानकारी साझा की। इसके लिए आकाशवाणी जोधपुर के पूरे परिवार की ओर से बेहद शुक्रिया।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सखियों, कला की दुनिया में कुछ ऐसी विधाएं भी हैं जो रंगों को सिर्फ सतह तक महदूद नहीं रखती, बल्कि उन्हें एक नई गहराई और नई पहचान अता करती है। ऐसी ही एक दिलकश और पुरकशिष्ट कला है नाइफ और टेक्सचर पेंटिंग।
4: जी बिल्कुल, यह कला अपनी उभरी हुई बनावट, गहराई और खूबसूरत असर की वजह से खास पहचान रखती है। जब किसी तस्वीर को देखा जाए और उसमें रंगों के परते उभार और बनावट को साफ महसूस हो, तो वह अपनी तरफ बरबस तवज्जो खींच लेती हैं।
3: नाइफ पेंटिंग में आमतौर पर देखो ना, ब्रश की जगह पैलेट नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है।
4: अगर मैं बात करूं मकसूदन नाइफ की, तो ये चाकू नहीं है, ये एक फ्लैट नाइफ की तरह दिखने वाला एक उपकरण है, जिससे हम पूरी तरह से पेंटिंग कर सकते हैं और सीधी सीधी फ्लैट पेंटिंग कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, जो ये नाइफ पैलेट है, इसकी मदद से रंगों को कैनवास पे फैलाया जाता है, परत दर परत सजाया जाता है और मुख्तलिफ अंदाज में आकार दिए जाते हैं। यही वजह है कि तस्वीर में एक अलग ही रौनक और जिंदा दिली नजर आती है।
4: वहीं टेक्सचर पेंटिंग में रंगों के साथ ऐसे माध्यमों का

0: इस्तेमाल किया जाता है जिनसे सतह पर उभार और गहराई पैदा होती है। फूलों की नज़ाकत, कुदरती मंजर, अमूर्त डिज़ाइन और जदीद कलात्मक अभिव्यक्तियाँ इस अंदाज में बेहद खूबसूरती से पेश की जाती हैं।
1: आज के दौर में नाइफ और टेक्सचर पेंटिंग महज एक कला शैली नहीं रही, बल्कि अपने एहसासात और तखयल को बयां करने का एक असरदार जरिया बन चुकी है। फनकार रंगों की परतों और बनावट के जरिए अपने ख्यालात को एक नई जिंदगानी देता है ना?
0: और शायद इस कला का सबसे खास पैगाम भी यही है मकसदन, कि खूबसूरती हमेशा एक जैसी और हमवार नए सतहों में नहीं होती। कभी कभी रंगों की अनगढ़ परतें, उभरे हुए नक्श और अलग अलग बनावटें भी ऐसी दिलकशी पैदा कर देती हैं जो देखने वाले के दिल पर गहरा असर छोड़ जाती हैं।
1: सखियो, नाइफ और टेक्सचर पेंटिंग हमें यह एहसास दिलाती है कि तख्लीक की दुनिया में हर परत की अपनी अहमियत होती है। जब रंग, कल्पना और हुनर एक साथ मिलते हैं तो एक साधारण कैनवास भी कला का बेहतरीन नमूना बन जाती है।
0: ये तो हुई मॉडर्न आर्ट की बात मकसूदन, और हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं वो भी बहुत फेमस हैं। ऐसी ही एक कला है तेलंगाना की, चोरियाल स्क्रॉल कला। इस कला में लंबे कपड़े के स्क्रॉल पर प्राकृतिक रंगों से पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं और सामाजिक प्रसंग चित्रित किए जाते हैं। चित्रों की रूपरेखा पहले बनाई जाती है और फिर उनमें चमकीले रंग भरे जाते हैं।

0: सखियों, राजस्थान की मिट्टी में रचे बसे रंगों की बात हो और फड़ चित्रकला का जिक्र ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। फड़ सिर्फ एक चित्रकला नहीं बल्कि लोक कथाओं, आस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत का चलता फिरता दस्तावेज है।
1: सखियों, फड़ चित्रकला राजस्थान की एक प्राचीन लोक कला है जिसमें लंबे कपड़े पर लोक देवताओं, वीर गाथाओं और ऐतिहासिक प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से उकेरा जाता है। ये कला सदियों से हमारी परंपराओं की को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करती है।
0: और फड़ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर चित्र अपने भीतर एक पूरी दास्तान समेटे होता है। रंगों और आकृतियों के जरिए कलाकार ऐसे मंजर तख्लीक करता है कि देखने वाला खुद को उसी कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है।
1: इस कला में लाल, पीले, हरे और नारंगी जैसे चटाक रंगों का इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है। यही रंग फड़ को उसकी अलग पहचान और रौनक अता करता है।
0: तस्वीरों में जब तहजीब का उजाला मिलता है तो गुजरा हुआ जमाना फिर दोबारा मिलता है। सखियों, फड़ चित्रकला हमें अपनी जड़ों से जोड़ने वाली एक अनमोल धरोहर है जिसे सहेजना और आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: मकसूदन, बात हो रही है राजस्थान की, तो अब राजस्थान से लेकर मैं आपको ले चलती हूँ मध्य प्रदेश की ओर, वहाँ की गोंड चित्रकला की ओर। गोंड कला में बिंदु, रेखाएं और सूक्ष्म पैटर्न का प्रयोग करके पेड़ पौधे, जानवर, देवता और प्रकृति से जुड़े चित्र बनाए जाते हैं। इसमें चमकीले रंगों का प्रयोग विशेष रूप से होता है।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सखियों, बात करते हैं एक ऐसी कला की जिसमें भक्ति, सौंदर्य और रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं पिछवाई का चित्रकला की।
4: पिछवाई चित्रकला का रिश्ता श्री नाजी की आराधना से जुड़ा हुआ है। कपड़े पे बनाई जाने वाली भव्य चित्र कृतियां मंदिरों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ भारतीय कला की नफासात को भी बयां करती है, ना?
3: बिल्कुल। पिछवाई में कमल, गाय, मोर, वृंदावन के दृश्य और श्री कृष्ण लीला के विविध रूप बेहद खूबसूरती से दर्शाए जाते हैं। बारीक कारीगरी और रंगों का संतुलन इसे विशेष बनाता है।
4: इस कला को देखकर ऐसा महसूस होता है ना जोसना, जैसे रंग इबादत का रूप ले चुके हैं।
3: बिल्कुल।
4: हर रंग में श्रद्धा और हर रंग में अपना पंज लगता है। कलाकार महीनों की मेहनत से एक चित्र को मकमूल करता है, तभी उसकी असली चमक सामने आती है, है ना?
3: बिल्कुल। आज पिछवाई कला देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और कलात्मक उत्कृष्टता का शानदार उदाहरण है।
4: सखियों, पिछवाई

0: भाई हमें ये एहसास कराती है कि जब कला और आस्था एक साथ मिलते हैं ना, तो रंग भी रूहानी एहसास बन जाते हैं।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से मकसूदन श्रीनाथ जी से जुड़ी हुई एक और चित्रकला है, ओडिशा की पट चित्रकला, जिसमें पट चित्र में आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: कपड़े पर की जाती है। यहाँ ताड़ पत्र पर प्राकृतिक रंगों से सूक्ष्म रेखाओं के साथ भगवान जगन्नाथ, कृष्ण लीला और पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है।

0: सखियों अब रुख करते हैं बिहार के उस मशहूर लोक कला की तरफ जिसने अपनी सादगी और खूबसूरती से पूरी दुनिया में पहचान बनाई, मधुबनी चित्रकला।
1: मधुबनी कला की शुरुआत मिथिला क्षेत्र से मानी जाती है। इस चित्रकला में कुदरत, लोक जीवन, पर्व त्योहार और पौराणिक प्रसंगों को बेहद आकर्षक अंदाज में चित्रित किया जाता है।
0: और इस मधुबनी चित्रकला की एक खास बात और है, इसकी बारीक रेखाएं और रंगों का जो अनूठा इस्तेमाल है और जो पारंपरिक रूप से इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है, इसकी अलग पहचान देता है, जिससे चित्रों में एक अलग पहचान झलकती है।
1: मछलियाँ, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा और लोक जीवन से जुड़े अनेक प्रतीक मधुबनी कला का अहम हिस्सा होते हैं। हर आकृति

0: प्रकृति अपने भीतर कोई ना कोई संदेश और अर्थ समेटे हुए होती है।
1: रंगों की जुबां होती है, तस्वीरें भी बोलती है, खामोशी रेखाएं भी दास्तानें खोलती है। मधुबनी कला सिर्फ सजावट नहीं बल्कि लोक संस्कृति और परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह हमें बताती है कि हमारी विरासत जितनी पुरानी है ना, उतनी ही रंगीन और समृद्ध भी है।
0: और यही वजह है कि आज मधुबनी चित्रकला दुनिया भर में भारतीय लोक कला की पहचान बन चुकी है, जो अपनी सादगी में भी बेमिसाल खूबसूरती समेटे हुए है। और बात हो रही है बिहार की, तो मैं आपको ले चलती हूँ गुजरात, गुजरात की रोगन कला की ओर। रोगन कला में अरंडी के तेल से तैयार गाढ़े रंगों के पेस्ट की धातु को सलाई या विशेष उपकरण की सहायता से कपड़े पर उकेरा जाता है। इसमें फूल, बेल बूटे और पारंपरिक डिजाइन बनाए जाते हैं।

0: मकसूदन, पानी के रंगों की बात हो रही है तो मैं आपको ले चलती हूँ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कालीघाट चित्रकला बनाई जाती है जिसमें कागज पर पानी के रंगों और स्याही को उपयोग किया जाता है। इसमें मोटी भारी रेखाएं, सरल आकृतियां तथा सामाजिक और धार्मिक विषय प्रमुख होते हैं।
1: जहाँ रेत भी किस्से सुनाती है, जहाँ हवाएं भी तहजीब का पैगाम लाती हैं, उस राजस्थान की फिजाओं में आज भी कला और संस्कृति की खुशबू महकती है। राजस्थान केवल वीरता और शौर्य की धरती नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का भी एक शानदार मरकज है। यहाँ हर कला अपने भीतर इतिहास की रिवायत, फनकारी की खूबसूरती दास्तान समेटे हुए है।
0: चाहे रंगों से सजी चित्रकला हो, बोलती हुई कठपुतलियां हो, या फिर नीले रंग की दिलकश ब्लू पॉटरी, हर कला अपने अंदाज में दिलों को छू जाती है। राजस्थान की चित्रकला अपनी नफासत और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की फर्श चित्रकला, लघु चित्रकला और पारंपरिक भित्ति चित्र केवल रंगों का मेल नहीं, बल्कि इतिहास और लोक जीवन की जिंदा तस्वीरें हैं।
1: जब कला

0: अपनी कूची से रंगों को कैनवास पे उतारता है ना, तो ऐसा लगता है मानो कोई पुरानी दास्तान फिर से जिंदा हो गई है। इन चित्रों में राजाओं की शान, लोक देवताओं की महिमा और गांवों की सादगी और प्रकृति का हुस्न एक अलग ही नजारा देता है ना।
1: बिल्कुल, रंगों में कुछ ऐसे जज्बात पिरोए जाते हैं कि खामोश चित्र भी अफसाने सुनाए जाते हैं। जयपुर की ब्लू पॉटरी भी ऐसी ही कुछ है। राजस्थान की सबसे खास और दिलकश कलाओं में से एक है ब्लू पॉटरी।
0: तो आपको कोई नाम याद आ रहा है
1: बिल्कुल,
0: इसमें?
1: कृपाल सिंह शेखावत जी का नाम याद आ रहा
0: हाँ,
1: है,
0: वो बड़े
1: जो
0: मशहूर कलाकार हैं
1: बिल्कुल
0: इसके,
1: इसकी
0: जिन्होंने इसको पूरे विश्व में पॉपुलर किया
1: जी
0: है।
1: इसकी पहचान इसका गहरा नीला रंग और नाजुक डिजाइन है। फूल, पत्तियां, बेल, बूटे और पारंपरिक आकृतियां जब इन कलाकृतियों पर उभरती हैं तो देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। ब्लू पॉटरी केवल एक हस्तशिल्प नहीं बल्कि कलाकार की मेहनत, सब्र और मोहब्बत का नतीजा है। हर वस्तु अपने भीतर फनकारी की एक अलग ही कहानी समेटे रहती है। मिट्टी के रंगों में एक ऐसा असर होता है, हर बर्तन में जैसे कोई ख्वाब मुकम्मल होता है।
0: क्या बात है, राजस्थान की ये कलाएं हमें अपनी जड़ों जड़ों से जोड़ती है। ये सिर्फ कला नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी तहजीब और हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। आज जरूरत है इस बात की कि हम इन कलाओं को सराहें, कलाकारों का हौसला बढ़ाएं और आने वाली नस्लों तक इस अनमोल धरोहर को पहुंचाएं। कला ही संस्कृति की पहचान रहती है, इसी से हर दौर में अपनी शान रहती है। जो अपनी विरासत को दिल से संभाल लेते हैं ना, उनकी पहचान हमेशा बरकरार रहती है।
1: बिल्कुल।

0: कुछ नया सी
1: सखियों, आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में कला हमें ठहरना, महसूस करना और स्वयं से जुड़ना सिखाती है। चाहे वह आर्ट थेरेपी के माध्यम से मन की गहराइयों को समझना हो या फिर आर्ट कैफे में रंगों के साथ कुछ खुशनुमा पल बिताना हो, कला हर रूप में जीवन को अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती है।
0: सखियों, रंगों, रेखाओं और रचनात्मकता के सजे हुए खूबसूरत सफर में आज का समय यहीं समाप्त होता है। फन सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने का नाम भी है। हमारी यही दुआ है कि आपकी जिंदगी में रंग इसी तरह बिखरते रहे हैं और इस तरह ही आपकी जिंदगी खुशनुमा हो।
1: आज के पूरे इस कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया कंट्रोल रूम से फारूक अहमद शेख ने, HPT से सुनील जयपाल ने और दिलीप सिंह परमार ने, कंसोल से आपको मीठे मीठे गीत सुनाए साक्षी परिहार ने और इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीष सोलंकी ने।
0: इसी मोहब्बत और अपनायत के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए नारी वाटिका और यूं ही जुड़े रहिए अपने हुनर, अपनी पहचान और अपनी रचनात्मकता के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारीवाटी का। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है।

0: महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू होगा।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरण जी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया

0: जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छी की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रतापराव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे, जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर मन्नाडे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमती फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor? ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मंच चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से, संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने, उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने, जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी शंभु दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से अनजान ने से लिखा राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता हिमानी हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी नजमा बेगम रियाज रिफाकत शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।
1: मन चाहेगी।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: तरंग श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं अब झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता, इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपाओ? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
3: जुड़ू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
4: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
3: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं।

0: डिसग्रेसफुल ऑन अवर पार्ट।
1: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
0: हाँ वही तो देख रहा हूँ।
1: हाँ बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
2: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
0: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
3: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
0: ठहरो, कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
3: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
0: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक?
3: जी मैं घर जा रही हूँ।
1: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
3: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
0: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
3: नहीं नहीं ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
0: हाँ हाँ जाओगी?
3: जी
0: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
3: जी हाँ।
0: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
3: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
0: उसे जानती भी हो?
3: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
1: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
3: अच्छा तो अब मैं चलूं?
0: हाँ जाओ जाओ।
1: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
0: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।

0: मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ,
1: क्यों रे बेंट, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूँ माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास? कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास? इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो,

0: मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ। तुम कभी बेंजामिन मलोयस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
0: अरे छोड़ भी, पागल कहीं
2: का। मासी,
1: जीनी।
0: हाँ, आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेन से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
0: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
1: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?

0: अंदर आ जा।
1: बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुँची है, तभी बैंक से इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
3: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुँची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
3: अच्छा, होगी कोई। पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
2: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
3: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है। हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
2: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
3: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
2: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
3: नहीं,
2: कुछ भी नहीं समझते।
3: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
2: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ, क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
3: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
2: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
3: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
2: बेंच,
3: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना, सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
2: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौक चौक जाती हूँ।
3: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
2: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
3: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
2: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
0: लिखाई पढ़ाई हो गई?
2: हाँ मौसी हो गई।
0: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
2: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
0: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर, बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है, बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई, पढ़ाई, स्वभाव, चरित्र।
1: विल यू स्टॉप चुडू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है, और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी
0: है,
1: गलत है। बेंजामिन मोलाइस भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए, हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। कोले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता? हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ चलाकर राख कर डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंच?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बापू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही

0: बैठी हूँ, कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली, पर
0: पर क्या
1: न जाने, वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की? बेंज कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंज वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा। उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंज जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
3: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
0: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
0: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
3: कौन कौन कौन हो सकता है? कौन है? कौन कौन है? अरे ये तो जोन्सबर्ग के एक नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स जल्दी से दरवाजा खोलो।
4: अरे कैसे हुआ ऐसा?
3: क्या बात है?
4: क्या हुआ?
3: खून खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने
3: ईश्वर,
5: यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दल बल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
4: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
4: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांधू।
3: बांधो। देखो, जैसे भी हो रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
3: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए, पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाई ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
4: बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
3: अच्छा, आता हूँ।
6: हैंड्स अप।
3: आप लोग
6: जुड़ो, अंदर देखो। ये जल्दी, क्विक, कहाँ जा रहे ये सब?
7: ओह, तो आप ही जोसेफ पिस्ते हैं?
3: जी हाँ सर।
7: ये कौन है? सर, वो लड़का है। क्या नाम है तुम्हारा?
3: जी, जेम्स पिस्से।
8: कमरे का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
3: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
7: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। पता ही है, अभी अभी पैरों में

0: गोली खाकर जो छोकरा आया था कहाँ गया?
1: यहाँ तो कोई भी नहीं आया सर।
0: Shut up! झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
2: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
3: मैं सच कह रहा हूँ सर, यहाँ कोई नहीं है।
0: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूँ। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुँचा दिया।
2: मिल गया सर।
0: क्या मिल गया?
2: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी हुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
0: यू आर राइट
2: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियाँ ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
0: तो मिस्टर जोसेफ पित्से, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया?
1: जी
0: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
1: नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी
3: उधर। हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
0: मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हाँ, तो आप कहिए।
1: हाथ में बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुसाया सर, उसने हमें डराकर जख्म पर पट्टी बांधने को मजबूर कर दिया।
0: फिर झूठी कहानी करने लगा।
3: सर ये आप क्या कर रहे हैं? एक बूढ़े आदमी को आप लोग क्या है?
0: यू रास्कल!
1: सर सर, जेम्स मेरी एकमात्र संतान है, ये आप क्या जानना चाहते हैं?
4: बाबू, तुम्हारे मुंह से राज की कोई बात निकलने पर भी ये हमें छोड़ेंगे नहीं।
2: बिल्कुल खत्म कर डालूंगा।
0: चुड़ो उसे मेरे पास दो। मिस्टर पित्से, 1 से 10 गिनने के बीच जो कुछ भी जानते हैं फौरन बता दीजिए, वरना मेरी छोटी सी नली का गरम सीसा जेम्स की खोपड़ी को छेद कर पार हो जाएगा। और
4: बाबू, एक जेम्स के मरने से हजारों हजार जेम्स पैदा होंगे, पर मैं विश्वासघातक का बेटा होकर जीना नहीं चाहूंगा बाबू, कभी नहीं, कभी नहीं।
0: सोच लीजिए, तो फिर आप अपने खानदान के आखिरी चिराग की मौत की वजह खुद ही बन रहे हैं।
1: ये नहीं।
0: वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स,
4: नहीं, रुके बाबू,
0: 7, 8, 9,
2: ठहरिए, हैंड्स अप।
5: सॉरी बेंजामिन,
0: दैट ग्रेट पोएट, आई सी,
2: बिल्कुल नहीं ना, वरना गोली मार दूंगा।
6: बस रहने दीजिए, ज्यादा बहादुरी ना दिखाइए। टेनरी में कच्ची चमड़ी बदन पर लपेट कर पड़ा था और देख रहा था इन दो बेगुनाह इंसानों पर की जाने वाली आप लोगों की ज्यादती की उछल कूद। खैर छोड़ दीजिए इन लोगों को, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं मैं बता रहा हूँ आपको।
0: जरूर जरूर, आप ही तो बताएंगे, पर हाँ सीधे साधे शब्दों में कहिएगा, कविता में नहीं। हमें ये सब पसंद नहीं है। अब आपको हमारे साथ सरकारी मेहमान होकर जाना होगा। जुड़ू?
2: यस सर।
0: जरा अच्छी तरह से सावधानी के साथ लेकर जाना, इज डेंजरस।
2: यस सर।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action!
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए अब सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुँह लग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ

0: बहुत बहुत शुक्रिया अमर कान जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब टेरेस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस वहाँ हाँ। पे आप आपको जब बैठा हुआ देखते हैं हाँ। और जब वहाँ पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि यार भाई क्या है बात है, टेरेंस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ली है शायद, तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने और उसकी वजह?
0: आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं, डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पड़ा हूं, मेरा एजुकेशन वैसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज ए टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं नो बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं अटक जाता हूँ कि इसका शब्द क्या है। और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है, तुम जज हो भाई, तुम्हें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ेगी, और वो टेक्निकल चीजें मैं अंग्रेजी में जानता हूँ। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, फिर बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता हिंदी में, तो इसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूं अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था, अपनी लिखता था, समझता था। कोई मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है, तुम ऐसे ही बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी, ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें
1: उस बच्चे को।
0: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही।
0: हम जज नहीं है, हम मेंटर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटर हूं, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
1: बिल्कुल सही।
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है, अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या इसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूं कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है, अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं, तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है, चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होती है, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा, तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, लचीलापन। तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा, और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना, तो टेक्निकल चीजें से नहीं होती हैं, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं, तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती है, करतब दिखती है, लेकिन डांस में कई छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने

0: एक हल्का सा एक इनो अपने अपने एक शरीर के अंग से यहां से खिला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
1: अब टेरेंस यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने,
0: हाँ,
1: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि ये गाने बड़े कठिन है, यानी कि हाँ, डांस इसका जो है हाँ, बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
0: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना वो हाँ, कठिन होते हैं, बिकॉज़ उनका बेंचमार्क कितना सेट किया ना
1: उनकी एक फिल्म आपने की हुई है,
0: हाँ, रामलीला। तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं, जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है,
1: अच्छा
0: मनमोहिनी,
1: अच्छा मनमोहिनी,
0: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में, फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो, और वो इतनी फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू यू नो कोरियोग्राफ ऑन स्टेज।
2: हे

0: गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है बहुत डिफिकल्ट है. और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं.
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों में मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूंगा विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल. तो मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे इसको. तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में, किस तरीके से वो किया गया है उसको अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेलकोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है. तो जो इसके बीट थे ठक ठक ठक ठक, हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है. तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस है, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमजोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया. आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ

चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, और अगर आपने नजरअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को, तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।

0: बात की कि संजय लीला भंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर आपने संजय लीला भंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ।
1: देखिए मेरा उसमें, मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं खुद का जरूर कहूंगा कि जब आप संजय लीला भंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है, उनको डांस की जो समझ है ना वो हमसे भी ज्यादा है, सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड, सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कैन प्लीज हिम वेरी इजीली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर काम करो तुम लोग, और हम 5-6 दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर को भी बोलते हैं कि आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा, वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी दिखते नहीं है।

0: उनको उनको पता है, वो ट्रस्ट बेच रहा है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला बंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट वो 5 दिन की होती है, सो इट इज सो डिटेल्ड। मैं बताऊं रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड, हमने 2 दिन शूट कर दिया। फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया, सर हाँ सर मैं, सर ओके कॉल मी। सो मैंने कॉल किया, सर देखिए मुझे गाना मजा नहीं आ रहा। सर तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं है, कुछ चेंज करें। सर नहीं नहीं तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मजा नहीं आ रहा, दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा, तो हम फिर से शूट करेंगे कल। ऐसे कॉस्ट्यूम हरा तो रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज्यादा बेटर लगेगा। तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने व्हाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक व्हाइट विल लुक बेटर, एंड फॉर मी व्हाइट इज माय फेवरेट कलर। आई सेड सर दिस विल लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज लुकिंग लाइक इट वाज लाइक अ रॉयल राजस्थानी कालबेलिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम, बट ये व्हाइट में एक अलग ही एक यू नो एक
1: क्रेज है।
0: एंड प्लस सी वो ही थिंग्स मेटाफोरिकली, अच्छा ये सॉन्ग अंग लगा दे इस सुहागरात वाला सॉन्ग, वो अभी भी शादी करके आए हैं, दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है, दोनों शोक मना रहे हैं, और इस माहौल में दीपिका को यू नो रणवीर को रिझाना है और उसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। सो इट्स ऑल्सो द सुहागरात वाला सीन, एंड येट इट हैज बी डन वेरी टेस्टफुली। फॉर हिम इट वॉज लाइक नॉट ब्लैक, ब्लैक इज ऑलरेडी फर्स्ट टाइम एक लड़की, सो व्हाइट इट शुड बी व्हाइट, उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल, सो ही थिंक्स उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है। तो वी शॉट द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन, 2 डेज वापस शूट किया हम लोग ने। तो एक अलग ही लेवल का एक यू नो कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है, और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा है।
1: जाहिर है, जहाँ आपकी काम की सराहना भी हो रही है,
0: हाँ।
1: और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब चुका है।
0: तो मजा आता है काम करने का, और हम भूल जाते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, कैसे वक्त निकलता है पता ही नहीं चलता हमें, मुझे पता ही नहीं चला कब।

0: सेकेंडली मैं एक और मजे की बात करूंगा, यू नो एक चलने का शॉट है, वो लेके धूप लगाती है ओके तन्वी के सर पे, और फिर को चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है, तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया, लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था। अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से यू नो बिस्तर पर फैलेगा। उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे। He's that detailed. फिर वो दूसरा शॉट जो धनुची है उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है। तो there was a assistant only for the धनुची, कि तुम्हें धनुची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि धनुची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी। तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था, कि अगर वो धुआं नहीं निकला धनुची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों वो धनुची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है और फेस से फिर वो अपना बालों को यू नो सरकाती है और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है और मेकअप
1: भी नहीं, से चिंगारी निकल जाए
0: मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा और वो ले

0: देखिए कितनी बारीक बातें आपने बताई हैं, और हालांकि कोरियोग्राफी सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज है, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, हमारे जितने श्रोता हैं वो शायद इसे देख पा रहे होंगे। बहरहाल अब हम एक खास सवाल आपसे करेंगे। शुरुआत में जब आपसे बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि, जैसे मैंने कहा था कि अभी बहुत से कई आसमान आपको छूने हैं,
1: हाँ।
0: आपने भी कहा कई मकाम हैं,
1: हाँ।
0: क्या क्या सोच रखा है आपने?
1: यू नो, खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है, तो मैं सोचता हूँ कि कभी किसी को बताऊं मत, क्योंकि फिर आप पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैंने सबको बताया, अभी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सहज रूप में हो जाए, जब हो जाएगा तो हम उसको सामने रख देंगे। कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए कि इसने ऐसा बोला था, अब क्या हुआ, वो दबाव में नहीं आकर करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो अरमा है वो अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी अरमा है। मैं चाहता हूँ कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने व्यक्तित्व पर भी काम करूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, मेरा पूरा एक लिस्ट है फोन पे, कि इस पर ये साल 2020 में मेरा कोई लिस्ट, मेरा एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में मैंने ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि किस पर मुझे काम करना है, मेरे निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में, किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूँ। बहुत सारे चीजें हैं।
0: दो सवाल और हैं।
1: हाँ,
0: एक तो बहुत ही इजी है,
1: हाँ।
0: दूसरा बड़ा कठिन है। इजी सवाल यह है कि एक्टिंग वेक्टिंग करने का इरादा है आपका?
1: हाँ। हाँ, लेकिन वो हीरो वाला नहीं है।
0: नहीं, अब तो खैर आपको कैरेक्टर रोल ही करने
1: पड़ेंगे। मुझे कैरेक्टर रोल ही पसंद है, और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं

0: जब मैं इन्हों पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो वो प्ले करते हैं जो हीरो के नहीं है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना यू नो बहुत ही सटल परफॉर्मेंस देते हैं और वो दिल चुरा लेते हैं. मेन वन मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं सामने ना रहूं लेकिन साइड में रहकर भी मैं किसी का दिल जीत लूं, वो ज्यादा मुझे पावरफुल लगता है. तो आई फील इट्स नाइस. आई मीन अगर मेन कैरेक्टर मिल जाए तो ग्रेट, नॉट एस्पेशली इफ इट्स इंटरेस्टिंग. लेकिन मुझे ना, मैं भी थोड़ा चूजी हूं क्योंकि मुझे अब मेरी फिल्में जो मैं कर रहा हूं या मैं एक्टिंग की जो मुझे यू नो जो मैं अपने अरमान पूरा करना चाहता हूं, इट्स नॉट बिकॉज मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए. नहीं, मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूं अगर रोल इतना अच्छा हो या जो मेरे दिल के करीब हो. और रोल ऐसा क्यों अच्छा लगेगा मुझे अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट ना हो. मुझे ब्लैक एंड व्हाइट रोल्स मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं. मुझे ग्रे कैरेक्टर के रोल्स बहुत पसंद है. एक इंसान या एक कैरेक्टर में वो सब अच्छा नहीं हो सकता, उसमें शेड्स होने चाहिए, ग्रे होना चाहिए. वो ग्रे एरिया जो है वो हम दिखाते ही नहीं है. हम पिक्चर को बहुत ही मोस्ट ऑफ टाइम्स, आजकल दौर में एटलीस्ट फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मुझे वो हीरो विलन बहुत बोरिंग लगता है. अगर ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहां पे एक इंसान है लेकिन तुम्हें पसंद भी है लेकिन उसमें कोई दो तीन चीजें उसकी खोट भी है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, एवरीवन इज लाइक दिस,
1: खोट तो होती है.
0: एग्जैक्टली. तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना, जो जनरली फिल्म मेकर्स में कि एक हीरो अच्छा है और ये विलन है, मुझे बहुत ही बकवास लगती है. आई डोंट लाइक दोज रोल्स बिकॉज देयर इज नो चैलेंज, बिकॉज देयर इज नोबडी लाइक दैट. इट्स अनरियल, इट्स अ फेरी टेल. तो अगर रियलिस्टिक, अगर ऐसे फिल्में बनती हैं एंड रियलिस्टिक रोल्स, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं आज की तारीख में, जैसे अनुराग बासु या अनुराग कश्यप जी जो बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं. जोया अख्तर ने बहुत अच्छी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई. बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल डायरेक्टर्स हैं. जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं असगर फरीदी जो ईरान के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म सेपरेशन और एक सेल्समैन बनाई है. अगर उनकी पिक्चर जब मैं देखता हूं तो मैं मतलब बोलता हूं कि ये क्या एक्टिंग है भाई, इतनी नेचुरल, इतने सहज रूप में. लगता ही नहीं कि इनको पता भी है कि कैमरा लगा था. वो वाला एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो सटल रूप में कि आप इतने खो जाओ वो सीन में कि जो दूसरा सामने वाला जो देख रहा है इसको पता भी नहीं कि कैमरा चल रहा है, ये तो ऐसे ही निकल गया. वो वाली फीलिंग आनी चाहिए. इट शुड नॉट फील कि अच्छा ये एक्ट कर रहा है. तो वो एक अलग लेवल का.
1: अब एक बड़ा कठिन सा सवाल है. सवाल ये है, ऐसा है कि जो मैं पूछना चाहता हूँ उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस मोमेंट के बाद.
0: अच्छा.
1: और वो है कि शादी के बारे में.
0: देखिए, मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है. मैंने कहा है कि मेरे लाइफ में, हमारे फैमिली में सभी मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं. लेकिन मेरी माँ को बोलती है अगर एक तो चाहिए ना जो संतान जो एकदम अलग करे, तो वो मैं हूँ. और उसको मैं सेल्फ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ जल्दी किसी के साथ, के किसी इंसान के साथ भी और किसी चीज के साथ भी. मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ. और मैं किसी एक के साथ नहीं जुड़ा रख सकता. सो आई नो कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ. तो अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए. क्योंकि वो दूसरे के जीवन नष्ट कर सकता है. मैं रिलेशनशिप में रहा हूं और मैंने देखा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं. मैं ये पहले क्लियरली बता देता हूं क्योंकि मैं फिगर ही नहीं करता. मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिलें पर ज्यादा अमल करना चाहता हूँ. और मुझे इट्स नॉट कि मुझे कोई किसी का साथ चाहिए. मैं अपने आप खुद, मैंने पूरी लाइफ खुद ब खुद जी है, की है. तो मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे किसी की इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को संभाला है बचपन से.

0: अब एक और बात है
1: हाँ।
0: कि आपने अब ये तो तय कर लिया, बता दिया कि हाँ। ये नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
0: लेकिन आपके अंदर जो कला है
1: हाँ,
0: देखिए कला बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपकी अलमारी में रखा हुआ आपका धन,
1: करेक्ट,
0: जिस तरह से अलमारी में रखा हुआ धन बाप अपने बेटे को दे के जाता है, उसी तरह से अपने अंदर की कला विरासत में अपने बच्चों को दे के जाता है
1: हाँ।
0: तो आप अपनी विरासत किसको देंगे?
1: एक एक जो आप कह रहे हैं, लोग बहुत कहते हैं हाँ ये जो आपके गुण है वो आ जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बाप में क्या डांस का गुण था जो मेरे में आ गया? कुछ नहीं था ना, मुझे विरासत में डांस तो मिला ही नहीं, लेकिन एक लगाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आप किसी को भी आप अपना मानते हो, और मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, बच्चों जो मेरे साथ सीखते हैं उनको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीजें जो मैंने सीखा है समझा है दे दिया है उनको। जो मेरी विरासत है वो वैसे भी मेरी नहीं है, मुझे सौगात में मिली थी, मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला था, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता उसको। मेरा फर्ज है कि मैं जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे धन संपत्ति और शौहरत मिली है, मैं उसको बांटूं, क्योंकि ये करेंसी है, ये चलनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, ये एक के पास नहीं देनी चाहिए, ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आते जाएगा, इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, और बहुत लोग जैसे शक्ति हो, पुनीत हो, बड़े बड़े बड़े ये तो फिर भी जाने माने लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं, और अगर वो उसकी उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं किसी को भी अपना मना सकता हूं और उसको बता सकता हूं, अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है, मैं अपने पास सकना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो हम क्या है, हम तो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम है या जो हमने दिया है, जो हमने समझा है, वही हमें बांटना है। हमें खुशबू की तरह आए हैं और खुशबू की तरह चले जाएंगे।

0: आप खुशबू की तरह तो अभी नहीं जाने देंगे हम आपको, एक सुरीली खुशबू जरूर हम चाहता हूँ कि आप फैलाएं। यहाँ पे क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी लंबी बातचीत जो हुई, आपने जिंदगी की बहुत सी बातें आपने आज विविध भारती के श्रोताओं के साथ बांटी हैं, पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको?
1: बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने पैदा किया कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आप फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है, जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, तो आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने उसको गाइड किया बहुत मजा आया। और ऑल्सो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूं बिकॉज विविध भारती ये शब्द मुझे बचपन से जुड़ा है, बिकॉज हम सिर्फ रेडियो सुनते थे। आजकल के बच्चे शायद ये बहुत कम सुनने में आएगा कि विविध भारती, जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना हम, उनको क्या है विविध भारती क्या है, लेकिन हमें पता है कि इसकी अहमियत क्या है बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं। तो फॉर मी व्हेन जब आपका कॉल भी आया ना, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ मुझे जाना है क्योंकि इतनी ये जो आपकी जो विरासत है, जो ये जो आपकी जो परंपरा है जो चली आ रही है 1957 से, एक अलग ही परंपरा है और इसके साथ जुड़ना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ एक मैं चाहता हूँ, वो एक सुरीली खुशबू की जो मैं बात कर रहा था, आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा गाना हमें सुनना चाहिए?
1: कौन सा गाना जो एकदम लोगों को खुश कर देना? है अपना दिल तो आवारा है अपना।

0: इस गाने में एक लाइन थी, न जाने किस पे आएगा।
1: करेक्ट।
0: आपका दिल तो अब छोड़ देते हैं,
1: बहुत लोगों पे आया
0: और अपनी जगह पे
1: आया है और चला गया अभी,
0: और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया,
1: आ गया हाँ।
0: लेकिन एक खास बात है, हमारे जितने सुनने वाले हैं सबका दिल आप पर आ गया।
1: अरे क्या बात है।
0: और फिलहाल तो मेरा मन तो नहीं हो रहा, इतनी लंबी बातचीत के बाद भी लगता है बैठ के बात करते रहे आपसे, लेकिन आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार एक किसी और आसमान पर जब आप पहुंच जाएंगे तब हम आपसे फिर एक और मुलाकात करेंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और आज तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं अमरकांत आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहता हूं, और ये हमारी बहुत खुशनसीबी रही कि आपने न सिर्फ टाइम दिया बल्कि इतने इत्मीनान से इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि मैं दिल खोल के बात करूं, तो शुक्रिया, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही एंडियरिंग है। जब प्यार सामने से आता है तो एक इंसान भी खुल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव। और सभी जो सुनने वाले हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, आप जरूर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहा तो बहुत सारे जो मकाम है जिंदगी में मैं जरूर हासिल करना चाहूंगा आपके आशीर्वाद से।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर शाम के 5 बज रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पे ट्यून इन किया है. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, जहाँ मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर डॉली. और आज यहाँ मेरे साथ है
1: यश थानवी. जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे ढेर सारी बातें. और क्योंकि है वीकेंड, तो वीकेंड किस तरह से एंजॉय आप कर सकते हैं और कैसे इस वीकेंड को जो है वो और भी खास बना सकते हैं इस तपती गर्मी के अंदर भी, उसके बारे में भी हम करेंगे कई सारी बातें. लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत.

0: वेलकम बैक टू
1: युवाणी दोस्तों। तो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि युवाणी युवाओं का कार्यक्रम है जहां हम सब मिलते हैं, हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, गाने सुनते हैं और अब जो शाम है उसको और भी खास बनाते हैं।
2: बिल्कुल। और डॉली, क्योंकि आजकल के बच्चे हम देखते हैं कि जैसे कि हर बच्चे की अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, तो हर बच्चे जो है वो घूम के आ जाते हैं, बाहर कहीं टूर करके आ जाते हैं या फिर वैकेशन मना के आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर पे उनको बोर होने लगता है, उनको लगता है कि क्या करें, और उस वक्त वो केवल और केवल मोबाइल और सोशल मीडिया के आदि होते जाते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमारे बचपन में जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग क्या किया करते थे, हम बाहर जाके गेम्स खेला करते थे। जैसे कि कई सारे ऐसे गेम्स हैं जैसे कि छुपम छुपाई हुआ, या फिर संतोलिया हुआ, या फिर गिल्ली डंडा हुआ, या क्रिकेट हुआ, जो आजकल के बच्चे केवल और केवल मोबाइल पे कुछ गेम्स खेलकर ही अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन उनको ऐसे गेम्स सिखा सकते हैं जिससे कि वो अपनी शरीर की कसरत भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका जो दिमाग है वो भी उससे तेज होगा।
1: बिल्कुल यश, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने एक वर्ड बोला था, बोर होने वाला। क्या बोर होना ज़रूरी है या नहीं है, या हमारे लिए सही है नहीं है, या ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, सबके साथ हो रही है। क्योंकि हमें क्या ना, पहले के टाइम पे जब हम भी नहीं थे, तो पहले के टाइम पे डिवाइसेस नहीं होते थे, तो क्रिएटिविटी का काम करते थे या चीज़ों को इनोवेशन पे ध्यान देते थे। आज भी होता है
2: बिल्कुल
1: वो, बट स्टिल आज का क्या, डिवाइसेस बहुत ज़्यादा आ गए, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ गए, तो बोर्डम को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। और एक्चुअली बोर्डम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्रिएटिविटी के लिए। अगर हम बोर नहीं होंगे तो हमें लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने का ख्याल ही नहीं आएगा और हम क्रिएटिव काम करेंगे ही नहीं।
2: बिल्कुल। और पहले क्या होता था, जब हम बोर होते थे तो हम अपने फ्रेंड्स को बात करते थे, उनके घर पे जाते थे और सब फिर मिलके सब लोग खेलते थे। तो उससे क्या होता था कि आजकल के बच्चों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एनजाइटी बहुत ही छोटी सी उम्र से शुरू हो जाती है, वो पहले बच्चों को इनके बारे में नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि वो बच्चे हर बात अपने दोस्तों के साथ में साझा कर देते या फिर गेम्स के थ्रू वो बातें भूल जाते थे जो भी टेंशन उनके दिमाग में होती थी। तो हमें भी ये करना चाहिए कि इन छुट्टियों के मौसम में जो है वो अपने बच्चों के साथ में जाकर, या तो गली मोहल्ले में उनके साथ में हम खुद खेलें, जिनसे कि उनको ये पता चले कि पहले इस तरह के गेम हुआ करते थे, और फिर धीरे धीरे वो भी इन गेम्स को खेलने लगेंगे और उनकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी।

0: वेलकम बैक टू युवानी दोस्तों. मेरे को एक आइडिया आया है यश. वो आइडिया ये है कि अगर मान लो कल सुबह अगर सोशल मीडिया कंप्लीटली ऑफ कर दी जाए तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा?
1: अगर सोशल मीडिया कंप्लीटली ऑफ कर दी जाए तो मुझे शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मोबाइल बंद कर दिया जाए तो शायद मेरी जिंदगी में एक तरह से बवाल आ जाएगा.
0: हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं हमारे.
1: हाँ,
0: लेकिन सोशल मीडिया से तुम्हें इतना फर्क क्यों नहीं पड़ेगा?
1: क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ और इतना मेरे पास में काम रहता है कि मेरे पास में इतना समय ही नहीं रहता कि मैं सोशल मीडिया को यूज कर पाऊँ.
0: बेसिकली तुम एडिक्टेड नहीं हो सोशल
1: हाँ
0: मीडिया के, इतना यूज ही नहीं करते तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा यूज करते हैं. मीडियम लेवल पे भी अगर वो यूज करते हैं तो अगर
1: बिल्कुल
0: बंद करने कर दिया तो उन्हें बहुत फर्क
1: बिल्कुल,
0: पड़ेगा.
1: बहुत फर्क पड़ेगा. और कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये भी फर्क पड़ता है कि आज उनकी फ्रेंड ने क्या पोस्ट डाली है, क्या स्टेटस लगाया है, उससे भी उनको लगता है कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में. ये सब जानने की सबको कोशिश रहती है.
0: बिल्कुल, खुद की लाइफ पे तो हम फोकस कर नहीं पाते या हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या कुछ भी इसको समझ लीजिए, लेकिन दूसरों की लाइफ पे हम बहुत फोकस रखते हैं. और बल्कि हम इतना डिपेंडेंट हैं इन सब चीज़ों पे कि हम खुद ही नहीं जानते.
1: बिल्कुल. और इस सब में क्या होता है कि हम खुद की लाइफ को जीना भूल जाते हैं.
0: बिल्कुल. और एक और चीज़ है कि कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि मान लो हमारा फ़ोन ख़राब हो जाए, टूट जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि हमारे पास ना हो हमारा फ़ोन, तो हम फील करते हैं. पहले तो हमें बहुत रेस्टलेसनेस होती है कि हमें बहुत एंजाइटी टाइप फील होता है कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग है. एक दो दिन तो वैसा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद हमें थोड़ा प्रोडक्टिव फील होने लगता है. हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ खालीपन है जिसको क्रिएटिविटी काम या फिर कुछ अच्छे प्रोडक्टिव काम के साथ उसको फिल
1: बिल्कुल
0: किया जा
1: बिल्कुल.
0: सकता है.
1: और मुझे लगता है कि उसी वक्त हमको पता चलता है कि फोन के अलावा भी करने के लिए बहुत सी कुछ चीजें हैं.

0: बिल्कुल, फोन वो इम्पोर्टेंट टाइम हमारा ले रहा है जो हम बहुत ही अच्छी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: या फिर हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर हम बुक्स लिख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जो फोन की वजह से हम नहीं कर पाते हैं।
0: तो श्रोताओं, आप भी अगर ऐसा महसूस करते हैं तो आप भी सोचिए, और ब्रेक भी ले सकते हैं सोशल मीडिया से। सोचिए कि ऐसे क्या काम है जो सोशल मीडिया या फोन की वजह से वो आप नहीं कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और ट्राई कीजिए कि एक दिन वीक में ऐसा रखिए जिस दिन आप सोशल मीडिया को यूज़ ही ना करें, और फिर महसूस कीजिए कि उस दिन में आपने क्या क्या किया है।

0: अगर कोई खिलौने बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई मैकेनिक काम करने लगते हैं, या फिर ड्राइंग बनाने लगते हैं, या फिर उनको कोई पेड़ पौधे उगाने का शौक होता है, तो हर कोई माता पिता या रिलेटिव ये सोच लेता है कि आगे जाके इंजीनियर बनेगा, पेंटर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। मतलब बच्चे के दिमाग में पहले से ही बात डाल दी जाती है कि आपको इस चीज़ का शौक है तो आपको यही बनना है। लेकिन आज हमें ये सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हॉबी या पैशन को अपना करियर ही बनाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हम अपनी हॉबी या पैशन को अपना करियर बनाते हैं तो आप बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाते हैं, आप उसको बिजनेस समझने लगते हैं, और आपका जो एन्जॉयमेंट होता है उस पैशन या हॉबी में वो धीरे धीरे खोने लगता है।
1: बिल्कुल. और हर बार हम ये सोचने लगते हैं बहुत कैलकुलेटिव वे में, कि हिसाब लगाते हैं कि क्या आगे फ्यूचर में इसका मुझे कुछ करना है, नहीं तो मैं अभी इसको क्यों करूं. हम ये नहीं समझते, या फिर हमारे आसपास वाले या कोई भी हमें ये चीज़ अगर हमारे दिमाग में डाल दे कि इस तरह के क्वेश्चन, कि अगर आप डांस कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या होगा फ्यूचर में, या फिर अगर आपने डांस करना छोड़ दिया तो अगर इतने समय तक आपने किया था तो क्यों किया था, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं. तो इस तरह की बहुत सारे हमें नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती है. तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ हमारे लिए वो चीज़ करनी है. ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा उस चीज़ को कैलकुलेटिव वे में ही लें.
0: बिल्कुल डॉली, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप अपने पैशन को करियर बनाना चाहते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसके अंदर इस तरह से सोचिए कि आप उतना ही उसको दिमाग में लें जितना कि आप उसको कर पाए। लेकिन अगर आपको एंजॉय करना है तो आप ऐसी कोई हॉबी जरूर रखें जिससे कि आप अपने जीवन में एक एंजॉय फील कर सकें। तो इसके लिए आप जो है अपने करियर में अपने पैशन को लेकर आई है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उस पैशन का जो एन्जॉयमेंट है वो कहीं खो ना जाए।

0: तो दोस्तों, ऐसा बहुत बार आपको भी लगता है क्या जो मुझे लगता है कि कई बार जो हम जो है सुबह उठते हैं या फिर अचानक से कोई गाना या फिर कोई म्यूजिक सुन लेते हैं और फिर पूरे दिन जो है वो हमारे कानों में गूंजता रहता है या फिर बार बार वो लिरिक्स या वो धुन हमारे दिमाग में आती रहती है और हम उसे गुनगुनाने लगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं डॉली?
1: बिल्कुल सही तुमने यूज़ किया है अभी वर्ड कि बार बार रिपीट होता रहता है या बार बार एक ही चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है. ऐसा आखिर इसलिए होता है. एक्चुअली इस फिनोमेना को साइंस में कहते हैं ईयर वॉर्म. ईयर वॉर्म का मतलब होता है कि कोई गाना या उसकी कोई लाइन बिना चाहे बार बार दिमाग में चलती रहती है और बस चलती ही रहती है. चाहे वो गाना बंद हो जाए, हम चाहे पढ़ने लग जाएं, कहीं कोई काम पे चले जाएं, चाय कॉफ़ी पी रहे हो, किसी से बातें ही क्यों ना कर रहे हो, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बैकग्राउंड में वो चीज़ चलती रहती है, चलती रहती है.
0: जी हाँ श्रोताओं, अगर आपको भी ऐसा बहुत बार फील होता है या आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो इसको जो है ईयरवॉर्म कहते हैं, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो ब्रेन से बहुत जल्द कनेक्ट हो जाता है, इसलिए जो है वो आपके दिमाग में बार बार चलता रहता है। और ये अक्सर जब होता है जब आप सुबह सुबह उठते ही या फिर सुबह के टाइम अचानक से कोई भी गाना या धुन सुन लेते हैं, तो उस वक्त आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और उस वक्त जो आपके दिमाग में जाता है वो प्रोसेस हो जाता है और वही दिमाग में दिन भर चलने लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा

0: तीन महीने में पैसे डबल,
1: वाह,
2: फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
0: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
0: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
1: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
0: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
0: और फास्ट बॉलिंग से भी।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: यश, तुम्हें पता है आजकल ना बहुत ही बढ़िया सी एक डिबेट चल रही है, और वो ये है कि फोमो वर्सेस जोमो, जिसमें से फोमो तो सबको पता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो जोमो है वो नया नया सा लग रहा है।
6: डॉली, जोमो जो है वो है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। मतलब सबको दुख या डर तो रहता ही है कि मैं यहाँ पे नहीं

0: था। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको खुशी भी होती है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि मैं वहां पर नहीं था। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे युवा साथी या फिर बच्चे स्कूल की या कॉलेज की छुट्टी लेते हैं और उसी दिन उनको पता चलता है कि कॉलेज या स्कूल में सरप्राइज टेस्ट था, तब महसूस होता है जोमो की, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, कि वाओ मैं आज नहीं गया और सरप्राइज टेस्ट
1: बहुत बढ़िया हुआ वो तो। और
0: था।
1: लेकिन फोमो का भी तो एग्जाम्पल होना चाहिए ना, बढ़िया सा।
0: हाँ, फोमो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली फंक्शन होते हैं या फिर हमारे कजिन की शादी होती है और हमारे एग्जाम आ जाते हैं उसी वक्त, तब हमें महसूस होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
1: बिल्कुल, तो ये तो हमने सॉल्व कर दी फोमो वर्सेस जोमो। और भी ऐसे टॉपिक्स, थोड़े से साइंस रिलेटेड, थोड़े से फनी, थोड़े इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद।

0: यश एक बात बताओ, हमें हिचकी क्यों आती है?
1: हिचकी, जब हमको कोई याद करता है तो हिचकी आ जाती है।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये बात नहीं है। देखो, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे लंग्स के नीचे एक मसल होती है, जैसे उसे कहते हैं डायफ्राम, और ये मसल हमें सांस लेने में, जो हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, उसमें हेल्प करती है। और कभी कभी डायफ्राम अचानक और बिना कंट्रोल के कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हवा तेज़ी से अंदर आ जाती है और हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो तुरंत बंद हो जाते हैं, और फिर एक आवाज़ निकलती है, हिक हिक, तो वो हिचकी बन जाती है।
1: लो, और मैं अब तक सोच रहा था कि हर बार जब मुझे हिचकी आती है तो कोई ना कोई मुझे याद कर रहा होता है, और इसी में मैं खुश हो जाता था कि यार मुझे कोई याद कर रहा है।
0: क्या बात है, हालांकि ये भी ऐसे सोचा जाए तो बढ़िया ही है, जिसने भी ये शुरू किया होगा ना, बढ़िया किया।

0: यश, उड़ती उड़ती एक खबर आई है कि मार्केट में एक नया वर्ड आया है, स्ट्रेस लेक्सिंग।
1: स्ट्रेस लेक्सिंग, ये तो रिलैक्सिंग से थोड़ा मैच लग रहा है।
0: हाँ, ये है तो कुछ वैसा ही लेकिन थोड़ा अलग है।
1: इसमें ये होता है स्ट्रेस लेक्सिंग में कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो हैं वो आराम से लेटे रहते हैं, रिलैक्स करते रहते हैं, लेकिन हमको ये टेंशन होने लग जाती है कि हम रेस्ट क्यों कर रहे हैं, रिलैक्स क्यों कर रहे हैं। मतलब रिलैक्स करते हुए हमें टेंशन या स्ट्रेस होने लग जाता है इस बात का कि हम रिलैक्स क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें दिमाग में होता है कि हमें काम करना है या फिर युवा साथियों को कोई पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, लेकिन फिर भी वो रेस्ट करते रहते हैं और रेस्ट करते करते उनको टेंशन और स्ट्रेस रहता है कि मुझे काम कर रहा है, मैं रेस्ट क्यों कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, एक्चुअली करना क्या चाहिए कि हमें जाकर पढ़ाई कर लेनी चाहिए या
1: बिल्कुल,
0: हमें काम कर लेना चाहिए, वो तो हम करेंगे नहीं।
1: लेकिन हम करेंगे स्ट्रेस लेक्सिंग।
0: बिल्कुल, क्या बात है, क्या नया वर्ड है, आप भी यूज कर सकते हैं इसको।
1: हाँ, ये सुनने में ही अच्छा लगता है लेकिन कीजिएगा मत।

0: डॉली आजकल ऐसा होता है कि बहुत बार मैं जो है कुछ सर्च करने या कुछ देखने के लिए मोबाइल लेता हूँ और अचानक से मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या सर्च करना था। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई शब्द किसी को बताना होता है, कोई वर्ड जो मेरे दिमाग में था और अचानक से मेरी जबान पे नहीं आ पाता है, मैं एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ और मुझे याद नहीं आ पाता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा था।
1: बिल्कुल. देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट में सबके साथ होता है कि हम करने कुछ जाते हैं और भूल जाते हैं, करके कुछ और ही आ जाते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल. जैसे एक बात बताऊँ, ये मुझे लगता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, हर सेकंड आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती जा रही जाती जा रही है. तो एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे, उसको प्रोसेस करे, उसका जो भी पूरा प्रोसेस है वो होए, उससे पहले तो दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है. तो कौन सी इम्पॉर्टेंट है, ये तो फिगर आउट करने का टाइम ही नहीं
0: बिल्कुल
1: मिलता.
0: बिल्कुल। और हम इतनी फिजूल इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते जाते हैं सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, जिससे कि हमारा दिमाग जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको एग्जिट करता जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हमको याद करनी है वो सब हम भूलते जाते हैं।
1: बिल्कुल. और साइकोलॉजिस्ट इसे एक टर्म भी देते हैं, उसका नाम है डोरवे इफेक्ट. इसको डोरवे इफेक्ट बोलते हैं कि जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट लगती है हमारे ब्रेन को वो स्टोर करने के लिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो भूलने लगते हैं.
0: बिल्कुल। और जब हम उसे याद करते हैं तो वो हमारे दिमाग से ब्लैंक हो जाती है।
1: बिल्कुल.

0: तो श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी अब हमें इशारा कर रही है कि हमारे जाने का वक्त हो चला है, जहां आज हमने सुने प्यारे प्यारे से चटपटे गाने और की आपसे ढेर सारी बातें. और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर डॉली.
1: मैं था यश थानवी. आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन था राजेश लामरोड का.
0: नमस्कार.

अभी आप सुन रहे थे युववाणी, ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का गुड इवनिंग जोधपुर में। आज इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें और गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट मुस्कान।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गुड इवनिंग जोधपुर में। शनिवार की शाम है, कुछ मौसम बदल रहा है, कुछ शहर ढल रहा है और 5 दिनों का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो चलिए इस सुकून भरी शाम को बनाते हैं और भी सुरीला और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, शनिवार की शाम अपने साथ सुकून लाती है और मुझे तो लगता है इस शाम का मतलब हमारे लिए बचपन से अब तक एक ही है कि ना कल की कोई टेंशन और ना परसों का कोई डर।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो इस वक्त आपके पीछे या बैकग्राउंड में कौन सा गाना चल रहा होता? वैसे देखा जाए तो हम सबकी जिंदगी एक फिल्म ही है, और अपनी जिंदगी में तो सभी हीरो होते हैं, पर असल जिंदगी में मायने ये रखता है कि किसी दूसरे की कहानी में आपने क्या किरदार निभाया।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हमारा जीवन भी एक फिल्म ही है और किसी भी फिल्म में सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है इंटरवल, क्योंकि इंटरवल के बाद ही तो फिल्म में क्लाइमेक्स आता है। ठीक वैसे ही हमें भी ब्रेक लेते रहना चाहिए और उसके बाद पूरी एनर्जी के साथ फिर से काम पे लग जाना चाहिए। तो चलिए, अब हम भी लेते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल

दोस्तों, अभी गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में मटकी का पानी पी के जो ठंडक मिलती है वो और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। पर क्या आपने कभी देखा है कि मटकी जितनी बाहर से तपती हवा झेलती है, अंदर से उसके पानी में उतनी ही ठंडक आ जाती है। ठीक ऐसे ही चुनौतियाँ और बाहर का प्रेशर हमें अंदर से और भी काम और मजबूत बनाता है।

0: तरह सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रसुख एक तरफ
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर

दोस्तों, एक पुरानी कहानी है कि एक चिड़िया का घोंसला तूफान में बिखर जाता है। वो बहुत रोती है, भगवान से शिकायत भी करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस पेड़ पर उसका घोंसला था उस पर बिजली गिर गई। ठीक वैसे ही जीवन में भी रिजेक्शन या ना का मतलब हमेशा अंत नहीं होता, अक्सर ये रिडायरेक्शन होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे गुड इवनिंग जोधपुर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से, विशेष जयमाला के लिए थोड़ा सा इंतजार।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
3: जुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
3: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। विशेष जयमाला।

0: फौजी साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आपका मनोरंजन करने के लिए मैं चाहता तो था कि आपके रूबरू खड़ा होकर आपका दिल बहलाने की बातें करूं, लेकिन मुझे अपनी आवाज के जरिए ही आप तक पहुंचना होगा। मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना। ये कुर्बानी आप लोग करते हैं हमारी सरहदों की रक्षा करने के लिए, और इसके लिए मैं आपको लाखों सलाम करता हूं। आप मेरे इतने करीब हैं कि मुझे अपने से लगते हैं। कारण, मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली, और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर

सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं. आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं. मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है. जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है. मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है. कुंदनलाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे. उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया. उनकी आवाज आज भी कानों में इस तरह से गूंजती है कि मानो वो जिंदा आवाज हो. ऐसा नहीं लगता कि वो चले गए हैं. वो आज भी हमारे सामने उसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए हाजिर हैं, सामने दिखते हैं. उन्होंने जो गाने गाए, मैं बचपन से ही उससे बहुत मुतासर रहा हूं. जो उनका एक नई उम्मीद लाने वाला गाना मुझे अच्छा लगता था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं.

अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके, वो आप बखूबी जानते हैं। मेरी नजर में वो एक बहुत महान कलाकार थे। उनकी जो अंदर से आवाज निकलती थी, वो अपने कला की प्रदर्शनी जो अंदर से करते थे, दिल से करते थे, वो उनके कैरेक्टर के ऊपर छा जाती थी। बहुत कमाल था उनके पास। वो जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और उसी को वो अपने अलग अलग रोल्स में घोल के हमें दिखाते थे। वो मेरे पिता समान थे, मेरे गाइड थे। मैंने जिंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। मदनपुरी जी से मुझे अब संगीत की दुनिया में आते हुए एक ऐसा नाम याद आ रहा है जो मेरे ख्याल में संगीत की दुनिया में बहुत ऊंची पोजीशन रखता है। कमाल है, यानी उनका संगीत जैसे आपके रोम रोम में अंदर घुस जाता है, आपके दिल को छूता है, वो है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ने इतनी अच्छी कॉम्पोजिशंस हमें दी हैं कि हम वाह वाह कर उठते हैं। खुशी के फुव्वारे आसमान को छूते हैं जब लता जी हीर रांझा में ऐसे गाती हैं।

ये मेरी खुशकिस्मती है कि फिल्मों में होने के कारण मैं फिल्मों की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बहुत करीब रहा हूं। किशोर कुमार जी को आपने सुना है, वाह वाह क्या दिल से गाते थे वो। उनकी आवाज में सोज था, खुशी थी, दर्द था, यानी उन्होंने किस किस्म के गाने नहीं गाए, और इतने मजाकिया कि जब आपके सामने हो तो वो गाने के साथ साथ आपको हंसाते भी रहते थे। इसीलिए वो जब अपने प्रोग्राम करते थे, जैसे स्टार नाइट्स होती हैं तो किशोर कुमार नाइट होती थी। हाँ, मुझे उनके साथ लंदन जाने का भी मौका मिला था। ये उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले मैं उनके साथ लंदन गया था, तो वहां किशोर जी ने कहा कि हम क्या प्रोग्राम दें, बताओ हम क्या प्रोग्राम दें। मैंने कहा जी आप तो गाने का ही प्रोग्राम देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो गाएंगे, तुम क्या करोगे। मैंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कुछ दूसरी आइटम दूंगा, मैं स्टेज पे आके कुछ बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे साथ गाओ, तुम्हें गाना पड़ेगा। मैंने कहा किशोर जी कहाँ आप और कहाँ मैं हिम्मत नहीं रखता आपके सामने वहां स्टेज पे गाने की। अरे जाओ जाओ, ऐसा क्या बोलते हो, तुमको गाना पड़ेगा, आओ। तो उन्होंने स्टेज पर मिस्टर इंडिया का गाना गाया और साथ में मुझे भी गाने के लिए कहा। मैंने गाया, अब वो गाना तो मेरे पास रिकॉर्डेड है नहीं, मैं आपको सुना नहीं सकता। हाँ, एक और अच्छा सा गाना मैं उनका सुनाता हूँ जो उन्होंने प्यार का मौसम फिल्म में गाया है, बहुत ही प्यार से। वो कुछ इस तरह से है।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: हमारे महान गायकों में रफी पुरी का नाम बहुत ऊंचे दर्जे पे आता है। उन्होंने किस किस मूड के गाने नहीं गाए, हंसी के, खुशी के, गम के, क्लासिकल, लाइट, मजाहिया, हर किस्म के गाने गाए उन्होंने। बहुत सोच था उनकी आवाज में, जादू था। एक दिल सौ अफसाने में उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना गाया है लता जी के साथ।

मेरी पहली फिल्म थी रेशमा और शेरा, उसमें मैंने रहमत खान की भूमिका निभाई थी। कैरेक्टर रोल था, वो अच्छा था लेकिन विलेन नहीं था। हम रेगिस्तान में खेमों में रहते थे परिवार की तरह, और वो जिस ढंग से फिल्म फिल्माई गई, उसके नजारे दिन के वक्त कड़कती धूप में तपती हुई रेत के ऊपर हम काम करते थे, लेकिन बहुत मजा आता था। कभी दरख्त की छांव में बैठ जाते थे, हाँ इतने बड़े मैदान में रेत ही रेत दिखती थी और वहां पे मीलों मील कोई एक दरख्त नजर नहीं आता था। तो एक दरख्त के नीचे जब बैठते थे तो वहां ऊंट के जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं वो लग जाते थे पांव में और खून चूस जाते थे। इन मुश्किलात का सामना करते हुए सभी कलाकार अपने काम से दिल नहीं हटाते थे। खास तौर पर मुझे कहना पड़ेगा कि वहीदा जी जिस तरीके से रेत के टीले के ऊपर तपती हुई धूप में खड़ी रहती थी, उनके आसपास कोई उनको छाता देने वाला, छांव देने वाला कोई नहीं रहता था। बहुत लगन के

साथ उन्होंने फिल्म में काम किया। लता जी के गाने उस फिल्म में जो गाए हुए हैं वो जयदेव जी के म्यूजिक में हैं। जयदेव जी का म्यूजिक भी एक अपनी जगह रखता है। बहुत सोच था उनके म्यूजिक में, उनके कॉम्पोजिशन में। लीजिए मैं उनकी एक बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन लता जी की गाई हुई जो रात की रोशनी में फिल्माई गई थी वो आपको सुनाता हूं।

Raj Kapoor ji, ek bahut bade producer aur director hone ke ilawa, wo ek bahut bade kalakar bhi the. Bahut acche actor the. Kuch filmon mein to unhone kamal hi kar dikhaya. Wo role ke andar apne dhang se ghus jate the. Unki kuch light filmein bhi thi, serious filmein bhi unhone ki hain. To light filmon mein jaise ek unki film thi Chori Chori. Hamari industry mein bahut bade bade music director aaye hain. Aaye the, chale gaye, abhi bhi hain jo bahut acha music de rahe hain aur aapka manoranjan kar rahe hain. कुछ म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे हैं जो खुद गाते भी हैं और बहुत अच्छा गाया है उन्होंने उनमें से एक हैं बर्मन दादा एस डी बर्मन क्या बात थी उनके म्यूजिक की एक एक गाना माइलस्टोन था उनका बंदनी में उन्होंने खुद एक गाना गाया जो आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: लता मंगेशकर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है। हिंदुस्तान ही नहीं, लता जी का नाम दुनिया में फैला हुआ है हवा की तरह। लता जी ने वो गाने गाए हैं और इतने अच्छे ढंग से गाए हैं कि वो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। ये सही बात है कि उनको जो पदवी मिली ये गाने गाने से, दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें दिया गया, लता जी उस अवार्ड के खास हकदार थीं।

लता जी के साथ साथ उनकी बहन आशा भोसले। वाह वाह, क्या बात है उनकी आवाज में, क्या सोज है, क्या जादू है। ये जादू शब्द मैं बहुत की आवाजों के साथ मिला चुका हूं, लेकिन शब्द ही ये कॉमन है, क्या करूं, जादू ही है। और ऐसा अच्छा गाती हैं कि आप आंखें बंद करके महव हो जाते हैं गाना सुनने में। उन्होंने कुछ गाने हमारे एक बहुत ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब के डायरेक्शन में गाए हुए हैं, जिनमें से एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे याद आ रहा है। लीजिए, आप भी सुनिए।

मेरे प्यारे फौजी भाइयों, समय खत्म होता जा रहा है लेकिन मेरे गानों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, तो मैं क्या करूं? मैं जा रहा हूं भाई, मैंने इतने गाने सुनाए आपको, आप भी तो मेरे लिए एक गाना गाइए।

0: करने का इरादा है तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है।
1: आप हैं विविध भारती के संग।
3: जिज्ञासा
1: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हर साल 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत की प्राचीन योग परंपरा आज सारी दुनिया में फैल चुकी है और योग दिवस योग को पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले एक बड़े स्वास्थ्य अभियान में से एक बन चुका है। करोड़ों लोग विश्व योग दिवस पर योग अभ्यास करते हैं, योग के शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को अपनाने का संकल्प करते हैं। साल 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया था। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रखा था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के प्रस्ताव को ऐतिहासिक मंजूरी मिल गई थी और पहला योग दिवस भारत में 21 जून 2015 को राजपथ पर मनाया गया था। इतना बड़ा इतना विशाल कार्यक्रम हुआ कि 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। वैसे आपको बताएं 21 जून को विश्व योग दिवस क्यों मनाया जाता है, 21 जून का ही दिन क्यों चुना गया। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, इसे समर सोल्स्टिस या ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार इस दिन सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है जो आध्यात्मिक साधनाओं और योग के लिए ऊर्जावान और अनुकूल मानी जाती है। इस बरस 21 जून का जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो कोलकाता के रेड रोड पर होगा और इस साल की थीम है स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। पूरी दुनिया में 2500 से भी ज्यादा योग के बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। साल 2026 का योग दिवस इसलिए भी मायने रखता है कि अब जिस तरह की दुनिया बन गई है उसमें लोगों के साथ बहुत सारी सेहत की समस्याएं और मानसिक तनाव और दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में इस बार की थीम लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन देने की दिशा में एक संदेश भी है। आपको बता दें कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी उम्र बढ़ने के साथ योग स्वास्थ्य का रक्षक, एक तरह से ये थीम इस बरस की रखी गई है। और 2024 में जो थीम थी वो थी स्वयं और समाज के लिए योग और 2025 में जो थीम थी वो थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ सेहत की हिफाजत योग का दामन थामकर जरूरी तौर पर की जा सकती है, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो शारीरिक रूप से हमें सक्रिय रहना है, मानसिक रूप से संतुलित रहना है और इमोशनली मजबूत रहना है। ये तीनों उद्देश्य योग के जरिए पूरे किए जा सकते हैं। दुनिया भर में लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है और इसके साथ ही सेहत की चुनौतियां भी तो बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में योग एक ऐसे साधन ऐसे जरिए के रूप में सामने आता है जो शरीर के लचीलेपन को उसके संतुलन ताकत और मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद कर सकता है। नियमित योग करें तो शरीर की गतिशीलता बेहतर रहती है, योग से संतुलन मजबूत होता है, तनाव को नियंत्रित करने में योग से मदद मिलती है। प्राणायाम और ध्यान मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में जो भूमिका निभाते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। पूरी दुनिया में आज लोग योग को अपना रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारी जीवन शैली लगातार व्यस्त होती जा रही है, हमने अपने लिए समय निकालना तकरीबन बंद कर दिया है। ऐसे में

सुप्रसिद्ध अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग अभी आप सुन रहे थे, जिसे हमने प्राप्त किया विविध भारती के संग्रहालय से। अब आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है।

योग हमें खुद से मिलने का एक मौका देता है। हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में हुई थी, जहां इसे फेट दे ला म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने उस समय में इस दिन की कल्पना की थी, ताकि लोग बिना किसी रोक टोक के सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर संगीत बजा सकें और उसका आनंद ले सकें। धीरे धीरे ये परंपरा फ्रांस से निकलकर दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में फैल गई और आज ये एक वैश्विक उत्सव बन चुका है, जिसमें पेशेवर और शौकिया दोनों तरह के संगीतकार हिस्सा लेते हैं। यहाँ भी वही बात सामने आती है, संगीत दिवस के लिए 21 जून इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन समर सोल्स्टिस होता है। ये दिन रोशनी, ऊर्जा और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। संगीत केवल एक मनोरंजन नहीं है, संगीत कई स्तरों पर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि संगीत तनाव, चिंता और उदासी को कम करने में मदद करता है और हमारी इमोशनल सेहत को बेहतर बनाता है। शोध बताते हैं कि संगीत सुनने से शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मन को शांत और खुश रखते हैं। सामाजिक रूप से संगीत भाषा, संस्कृति और भौगोलिक सीमाओं के पार लोगों को जोड़ता है। आज कोई भी बड़ा कलाकार जिसका ताल्लुक संगीत से है, वो किसी एक देश का नहीं है, वो पूरी दुनिया का है, उसका ताल्लुक पूरी दुनिया से है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए संगीत सीखना याददाश्त, एकाग्रता और रचनात्मकता को बेहतर बनाता है, इसलिए इसे बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब भारत के शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और भक्ति संगीत की बात किए बिना हम विश्व संगीत दिवस की बात को पूरा कैसे कर सकते हैं? भारत संगीत के मामले में हमेशा से बड़ा समृद्ध देश रहा है। हमारा शास्त्रीय संगीत अपनी संरचना में पूरी तरह से वैज्ञानिक है और पूरी दुनिया के म्यूजिशियन इस संगीत को बहुत आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। अगर हम मेडिसिन की दुनिया की बात करें तो म्यूजिक थेरेपी का उपयोग आज डिप्रेशन, अल्जाइमर और कुछ दूसरी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस बहुत अलग अलग तरह से मनाया जा सकता है। एक तो ये है कि संगीत के कार्यक्रम पूरी दुनिया में आयोजित किए जा रहे हैं। फ्रांस में तो सड़कों, चौराहों और गलियों में संगीत के कार्यक्रम होते हैं। पेशेवर कलाकारों के साथ आम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर निकलते हैं और म्यूजिक बजाते हैं। पेरिस की सड़कों पर इस दिन संगीत की स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं। इटली, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में सार्वजनिक पार्कों, कैफेज और संग्रहालयों में लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं। कई जगह स्थानीय संगीत स्कूल और कॉलेज खुले मंच पर आयोजित करते हैं। अमेरिका और कनाडा में भी यही हाल है। भारत में भी अब कुछ कार्यक्रम संगीत दिवस के मौके पर होने लगे हैं।

एक और महत्वपूर्ण दिन है 21 जून को और ये है फादर्स डे। हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। पहला फादर्स डे 19 जून 1910 को अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में मनाया गया था। सनोरा स्मार्ट डॉड ने 1909 में मदर्स डे से प्रेरणा लेकर इसका प्रस्ताव रखा था। 1972 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस मौके पर नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया था। आज फादर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और 21 जून को जून के महीने का तीसरा रविवार फादर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। सोनोरा स्मार्ट डॉट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना आपको बताते हैं। वॉशिंगटन में 1910 में अमेरिका के स्पोकेन ने इसकी शुरुआत की थी। अपने पिता विलियम जैक्सन स्मार्ट के सम्मान में, जो एक सिविल वॉर वेटरन थे, उन्होंने अकेले अपने 6 बच्चों को पाला था। इससे भी 2 साल पहले 1908 में वेस्ट वर्जीनिया के फेयरमोंट में ग्रेस गोल्डन क्लेटन ने मोनोंगा खदान दुर्घटना में मारे गए

पिता को याद करते हुए एक चर्च में समारोह आयोजित किया था। तो इस तरह से ये दो घटनाएं मिलती हैं जो इतिहास में फादर्स डे को मनाने की घटनाएं हैं। दुनिया में अब चारों तरफ फादर्स डे मनाया जाता है और ये दिन है दरअसल अपने पिता को सलाम करने का दिन। आप सभी जानते हैं कि 23वां फीफा वर्ल्ड कप इस समय चल रहा है। 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक 39 दिन का ये जश्न है, फुटबॉल का ये जश्न, मेला, उत्सव। इसकी मेजबानी कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका तीन देश मिलकर कर रहे हैं। 16 शहरों में मैचेस का आयोजन हो रहा है, जिनमें 11 अमेरिका में, 3 मेक्सिको में और 2 कनाडा में है। ये पहला मौका है जब किसी पुरुष विश्व कप की मेजबानी 3 देश एक साथ मिलकर कर रहे हैं और पहली बार 48 टीमें खेल रही हैं। इससे पहले पुरुष वर्ल्ड कप में 32 टीमें हुआ करती थीं। मेक्सिको के लिए यह खास तौर पर ऐतिहासिक है। 1970 और 1986 में मेजबानी के बाद मेक्सिको पहला देश बन गया है जिसने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। और खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तो हम पिछले कुछ हफ्तों से आपको बता ही रहे हैं। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गिलर्मो, उचुआ सबसे ज्यादा 6-6 विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और 2026 में ये शामिल हैं। मेसी 26 मैच खेलकर सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बना चुके हैं। और जहां तक मैचों की बात है, इस बरस सबसे बड़ा उलटफेर जर्मनी के साथ हुआ। क्यूरासाओ विश्व कप में क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश है, उसने जर्मनी के खिलाफ ऐतिहासिक गोल दागा। जर्मनी तो हिल गया, हालांकि जर्मनी ने ये मैच 7-1 से जीता। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को हराकर एक बड़ा झटका दिया है, इस मैच का स्कोर रहा 2-1। कतर ने भी सुर्खियां बटोरी, 2022 के मेजबान रह चुके कतर ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ आखिरी मिनट में गोल दागकर 1-1 से ड्रॉ कर लिया। ये टूर्नामेंट का पहला बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। ब्राजील और मोरक्को के बीच एक बड़े मुकाबले की काफी चर्चा रही, बहुत लोग इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे और 1-1 से ये मैच ड्रॉ हो गया, जो बहुत ही अलग तरह का नतीजा है, अमूमन इसकी उम्मीद नहीं थी। और अब एल नीनो की बातें। प्रशांत महासागर में तेजी से बन रही ताकतवर एल नीनो की परिस्थितियां आने वाले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया की जलवायु और पूरी दुनिया के मौसम चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये इतिहास के अब तक के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े एल नीनो में से एक हो सकता है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एल्बानी में मौसम और पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर पॉल राउंडी का कहना है कि इस बात की पूरी आशंका है कि ये पिछले 140 सालों का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ताकतवर एल नीनो हो सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये मानता है कि बहुत जल्दी ही एल नीनो के हालात बनने वाले हैं और ये कम से कम सर्दियों तक चलेंगे और इसकी ताकत और समय को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के कई हिस्सों में सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, भीषण गर्मियां झेलनी पड़ेंगी और कई देशों में खाने पीने के सामान और पानी की किल्लत हो सकती है। दुनिया को इसे जलवायु से जुड़ी एक जरूरी चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। एल नीनो के ये हालात पहले से ही भट्टी की तरह तप रही दुनिया की आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। एल नीनो आखिर है क्या? कुदरती तौर पर होने वाला जलवायु का एक ऐसा चक्र जो हर 2 से 7 सालों में अपने आप उभर के आ जाता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली ट्रेड विंड कमजोर पड़ जाती है, जिससे प्रशांत महासागर में गर्म पानी जमा होने लगता है। हालांकि गर्म होने वाले पानी का ये इलाका लगभग अमेरिका के बराबर होता है और ये सिर्फ एक क्षेत्र में होता है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। जब उष्णकटिबंधीय इलाकों में वायुमंडल में बदलाव आता है तो इसकी वजह से बहुत दूर मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों में भी मौसम बदल जाता है, यानी हजारों हजार मील दूर जो इलाके हैं उन पर भी इसका पूरा असर होता है और इससे पूरी दुनिया में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसमें एल नीनो वायुमंडल का वो पहला डोमिनो साबित होता है जो सबसे पहले गिरता है और फिर बाकी सबको गिराता चला जाता है। यह था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोधालेख, स्वर और संपादन आपके दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: सुनो कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का तीसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे। वाचक स्वर ममता सिंह। इस कहानी में अब तक आपने सुना
2: राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगीं। शिवदास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते। भरा पूरा परिवार देख देख प्रसन्न होते, लेकिन देवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गईं। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ

0: बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की ज्योति कम हो गई, मगर वो प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इस सारे जख्म पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है, यहाँ कमाई में कोई बरकत नहीं। कोई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजूरी मिलती है, 4-5 साल भी रह गया तो मालो माल हो जाऊंगा। प्यारी ये प्रस्ताव सुनकर अबाक रह गई, आंखों में आंसू लाकर कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, ये कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चों के बिना इनका जी वहाँ न लगेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो।
1: अब आगे सुनिए।
0: दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी, कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का सारा कारोबार तो चौपट हो जाएगा, तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहती हो ना। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई, कभी एक दिन के लिए भी अकेले रहने का अवसर नहीं आया, दोनों बहनें सदैव साथ रहीं। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वो देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूल गए हैं, तो उसके जी में आता वो भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले, किंतु ये ममता जिस खाने को खाकर पली थी उसे अपने सामने से हटाए जाते देख क्षुब्ध होने से न रुकती थी। प्यारी के सिर सारे प्रबंध का भार था, विदाई का दिन प्यारी के लिए प्रतीक्षा का दिन था, उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिससे वो दृश्य देखना न पड़े। ज्यों ज्यों समय निकट आता था उसकी वृत्तियां शिथिल होती जाती थीं। वो कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी बिंदु की ओर ताकने लगती थी। बच्चे नए नए कुर्ते पहन नवाब बने घूम रहे थे, प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती तो रोने का समूह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। 10 बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई, लड़के पहले से ही उस पर जा बैठे, गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था, वो दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी, मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, लेकिन इस भड़बड़ में उसको इन बातों का मौका ही न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे, प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही, न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। जोखू कामचोर बातूनी और नशेबाज था, प्यारी उसे बार बार डांटती रहती थी, 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, ये काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मगर उसे झिड़क देने को जी न चाहता था। उसे इस समय सहानुभूति की भूख थी। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ, जीवन के व्यापार होने लगे, अब खेती का सारा भार प्यारी पर था, सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। घर में तो अब विशेष कोई काम रहा नहीं, प्यारी सारे दिन खेती बारी के काम में लगी रहती। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया, अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनती और मांग चोटी की ओर से भी उदासीन न रहती, आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था, प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल की झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था, जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वो हील बहाने करता था, अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब इसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा लो अब हाथ मुंह धो लो,

आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत का काम आज ही निपटाना जरूरी था, कल भी होता क्या जल्दी थी आखिर। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है, चिढ़कर बोला, मालकिन तुम दाएं बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें आखिर क्यों कूदती हो। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है, सवेरे मैं न पहुंचता तो कोई और आकर उसे छेक न लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती, तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। हाँ, प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कह थोड़ी न रही हूँ पागल, अरे मैं तो कहती हूँ जान रख कर काम किया करो, अरे कहीं बीमार न पड़ जाओ, बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, जोखू बोला, कौन बीमार पड़ जाएगा, मैं 20 साल में कभी सिर तक दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता, कहो रात भर मैं काम करता रहूं। प्यारी बोली, मैं क्या जानूं, तुम ही अतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जुर आ गया था, पेट में दर्द था। हाँ, जो खुझेपता हुआ बोला, अरे वो बातें तब की तब थी, जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डाले, अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे है सब, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी बोली, मैं क्या देखभाल नहीं करती। जोखू ने जवाब दिया, तुम बहुत करोगी, दो बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहाँ बैठी नहीं रह सकती ना। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर लिया, बोली, तो इतने रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, मालकिन तुम भी खूब कहती हो, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लो। हाँ, प्यारी बोली, आज मेरी रसोई में खाओ ना, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, अरे नहीं मालकिन, नहीं, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आध आध शेर की दो रोटी बनाकर खिला दो तो खा लूं। प्यारी बोली, मैं तो तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी, फुलके। जोखू बोला, हाँ तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी बोली, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू बोला, जरा बैलों को पानी देता हूँ तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, जुआर बाजरा सन अरहर सब तो है, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के जमाने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा जाता था, बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए, मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ, मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। हाँ, अरे तब घर के 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों न करूंगा, चल झूठा कहीं का। कहते थे 2 शेर खाता हूँ, 4 शेर खाता हूँ, आध शेर में रह गए, एक दिन तौलो मालकिन तब मालूम होगा। अरे हाँ तौला है, बड़े खाने वाले, मैं कह देती हूँ धान न रोपो, हाँ मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा तुम्हें। अरे तुम्हारी भला से मैं ही हलकान होऊंगा ना, ये देह किस दिन काम आएगी भला। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर दिन से पहर रात तक ताल में रहोगे और अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को जी उबने का अनुभव न था, कोई काम न हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, जी क्यों उबे भला। बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा, मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आ रहे हैं। प्यारी ने हार कर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, कल से जाना, आज बैठो यहीं। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा ये लो बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए कहा, अरे कहना क्या है, मैं पूछती हूँ अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते, अकेली मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन, अरे किससे सगाई कर लूं यहाँ, मैं ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूंगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे। प्यारी बोली, ये तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई,

0: ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी न चाहे। जोखू बोला, ये मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि वो गहने न चाहे। हाँ, मेरी जान न खाए, तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ही न किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो। जोखू बोला, अभी मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी, तो फिर मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं तो कहला के छोड़ूंगी। हाँ, जोखू बोला, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो सगाई करूँगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो, हंसी हंसी में तुम सब कुछ कह गए, सब कुछ। कहानी स्वामिनी का प्रथम प्रकाशन हिंदी में मासिक विशाल भारत सितंबर 1931 में प्रकाशित मानसरोवर भाग एक में संकलित उर्दू रूप मालकिन शीर्षक से उर्दू कहानी संग्रह वारदात में संकलित।
1: मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का तीसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। सुनो कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत वाचक स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। सुनो कहानी।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत।

0: अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाजें थीं। फिल्म का नाम था धड़कन। इसे लिखा समीर ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।

0: पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
3: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
0: विविध भारती पर हर पल है खास।
4: आज के मेहमान
2: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
5: आज के फनकार।
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
0: ये स्वर है अभिजीत और अलका याग्निक की, फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं। स्वर अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों के, गीत रचना समीर की और संगीत ए आर रहमान का।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना वासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन
2: ये आवाज है अलका याग्निक की, फिल्म का नाम है हमराज, गीतकार है सुधाकर शर्मा और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हुर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के

0: जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9,00,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत

0: मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

0: वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। फिल्म का नाम है त्रिशूल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार हयाम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था त्रिशूल। कार्यक्रम का अगला गीत नौशाद साहब का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है साथी।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था साथी। इसी आवाज को सुनिए, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: है? न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था यकीन। लता मंगेशकर की आवाज है फिल्म उलझन के लिए।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था उलझन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है यादों की बारात। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बसु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम कर

तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमती और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब वासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर ये फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक

जटिलता और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रची और इसका संगीत कनू रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना के करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए वासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: बासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। बासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहाँ एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य।

बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

नमस्कार साथियों, मैं हूँ आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। हवा के साथ नींद करवटें बदलती है, आंखों आंखों में बात करती है, जर्द पत्तों के बीच ढूंढती है खुशबू वो, फूल तो सूख गए वो कहाँ समझती है, मन की दहलीज पर रखकर चराग यादों के खत वो चुपके से अंधेरे में रोज पढ़ती है, वो कोई शोक हसीना नहीं है पर यू ही कभी कभी उदासियों के बीच हंसती है। ये अभी कौन सा मौसम जगा गया उसको, गुलाबो इत्र की खुशबू से वो महकती है, दर्द से इश्क लड़ाने की उसको आदत है, गम के सहरा में खड़ी तितलियां पकड़ती है।

गाया गीत में समय है एक अंतराल का मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां अधूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत सी थी वो रातें, हाथों में हाथ डाले करते थे हम जब ढेर सारी बातें। चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली घटाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं तुमसे लिपट जाती थी, जैसे रात की आगोश में कोई कली सी खिल जाती थी।

एक सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशा के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू, चांद की किरण कहूं या चांद हो तुम हूबहू।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM सन सिटी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया।

0: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर

0: and Meghalaya for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।